मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 अगस्त 2026। सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप

0: प्रताप जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है आम की बागवानी। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम आम का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, इसलिए अगर आप आम के पेड़ लगाना चाहते हैं तो लगाएं। इसके बगीचे के लिए गहरी दोमट मिट्टी, जिसमें अतिरिक्त जल के निकास की सुविधा हो, सर्वोत्तम होती है। बाग लगाने से पहले खेत में जुताई करके खरपतवारों को सूखने दिया जाता है। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे बरसात होने से पहले खरपतवार सूख जाएं। फिर पेड़ कितने दूरी पर लगाए जाएं, उनका रेखांकन किया जाता है। आजकल सामान्यतः वर्गाकार विधि से ही पेड़ों को लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी जितनी होती है उतनी ही पेड़ से पेड़ की दूरी भी रखते हैं। रेखांकन करते समय यह बात ध्यान रहे कि मेड़ के किनारे की लाइन निर्धारित दूरी की आधी दूरी पर बनावें। आम्रपाली को छोड़कर सभी कलमी आम के पेड़ को 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। आम्रपाली के लिए यह दूरी 2.5 से 3 मीटर रखते हैं। अतः आम्रपाली के लिए मेड़ के किनारे की पहली लाइन 1.25 मीटर पर तथा अन्य लाइनें 2.5-2.5 मीटर पर बनाते हैं। बाकी जो प्रजातियां हैं उनके लिए मेड़ के किनारे की लाइन 5 मीटर पर बनेगी और बाकी सभी लाइनें 10-10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गड्ढे की खुदाई करना। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय तो मई जून का महीना है। यह कार्य अगर कर लिए हैं तो ठीक है, इसमें भराई का कार्य करें, और यदि अगर खुदाई नहीं किए हैं तो इस समय खुदाई का कार्य करें। चूँकि सारे पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी सतह में ही होते हैं, अतः गड्ढा भरने के लिए ऊपर की आधी मिट्टी जो गड्ढा खोदते समय निकली रहती है उसे लेते हैं, और उतनी ही मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद लेते हैं। दीमक के प्रकोप से कभी कभी पौधे को काफ़ी नुकसान होता है, अतः लगभग 100 ग्राम लिंडेन चूर्ण और लगभग 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब मिला करके गड्ढे की भराई कर देते हैं। फिर इसमें पौधे को लगाया जाता है। पौधे लगाने का समय बरसात होने के बाद शुरू होता है, यानी जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक आप आम के पौधे को लगा सकते हैं। आम की कलम किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। प्रजाति देखने में स्वस्थ और लगभग 1 साल की होनी चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसे भी जान लें। आम की कुछ किस्में अगेती होती हैं जो कि जल्दी पकती हैं, कुछ किस्में मध्यकालीन होती हैं और कुछ किस्में देर से पकती हैं, जिन्हें हम पिछेती किस्में कहते हैं। आम की जो अगेती किस्में हैं उनमें प्रमुख हैं गौरजीत, रसौल और बम्बई हरा। आम की जो मध्यकालीन किस्में हैं वह हैं दशहरी, लंगड़ा, लखनऊ सफेदा व आम्रपाली। जो किस्में देर से पकती हैं वह हैं चौसा, फजली और अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति रामकेला। अगर आप आम का बगीचा लगा रहे हैं तो आपको इन सभी प्रकार में से प्रजातियों को चुनना चाहिए, जिससे पूरे सीजन भर आम की फलत मिलती रहे।

0: आम का पौधा लगा देने के बाद फिर उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। बरसात में पानी के निकास की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार निकालते रहें और गुड़ाई वगैरह भी करते रहना चाहिए। जब आम के पौधे 1 वर्ष के हो जाएं, तो उसमें अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर आम का बाग लगाना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज के विषय आम की बागवानी पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा जो इस संपूर्ण चराचर जगत को ऊर्जावान रखती है, यह ऊर्जा हमें कई रूपों में प्राप्त होती है, जिसका असल स्रोत है भक्ति और हमारे आराध्य।

हमें अनंत ऊर्जा और चेतना से भर देने वाले हमारे भोलेनाथ, जो सभी जीव अपने आप में ब्रह्मांड के इस अनंत ताकत का रसपान करते हैं। जब भोलेनाथ कृषि पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो वह व्यक्ति ही नहीं अपितु उसके अगल बगल उपस्थित प्रकृति भी अनंत ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाती है।

प्रभु की शक्ति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक और सांसारिक विकास में करता है तो उसके फल स्वरूप वह प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर अपनी भक्ति को हमेशा के लिए उपयोगी साबित करता है और भक्ति का यह सदुपयोग ही एक सच्चे भक्त को समाज में स्थापित करने में सहयोगी होता है।

भक्ति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिर्फ समाज के उत्थान में ही नहीं, बल्कि मनुष्य भी अपने स्वयं के सर्वगुण विकास के लिए भी करता है। सर्वगुण का विकास सिर्फ सभी भौतिक गुणों के विकास पर ही नहीं, अपितु सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए अपने आराध्य को और उनके आशीर्वचनों को आत्मसाद करना भी माना गया है। इसी प्रकार सर्वगुण के विकास का लक्ष्य एकमात्र भक्ति का उपयोग भी हो सकता है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे रूप कुमार राठौर, तुलसी कुमार, अनुराधा पौडवाल और दिलीप बोस। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के कार्यक्रम में सुनिए बाबू जगजीवन राम के विचार।
1: तुल न सके धरती धन धाम, धन्य तुम्हारा पावन नाम, लेकर तुम सा लक्ष्य ललाम, सफल काम जगजीवन राम। भारतीय राजनीति के कई शीर्ष पदों पर आसीन रहे बाबू जगजीवन राम न सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, सक्षम मंत्री और योग्य प्रशासक रहे, वरन एक कुशल संगठनकर्ता, सामाजिक विचारक और ओजस्वी वक्ता भी थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और भोजपुरी में उनकी धारा प्रवाह ओजमयी वाणी और विचारों को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते और अपनी वाक्पटुता से वे लोगों को निरुत्तर कर देते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा था, बाबू जगजीवन राम भारत के चोटी के विचारक, भविष्य दृष्टा और ऋषि राजनेता हैं, जो सबके कल्याण की सोचते हैं। बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले के चंदवा ग्राम में 5 अप्रैल 1908 को एक सामान्य परिवार में जन्मे बाबू जगजीवन राम की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। प्रकारांतर में एक मेधावी छात्र के रूप में जगजीवन राम प्रत्येक कक्षा में छात्रवृत्ति लेकर पढ़े और वैज्ञानिक बनने का सपना संजोए रहे, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें देश की आजादी ज्यादा जरूरी लगी और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय जब आरा पधारे तो वे युवा जगजीवन राम के व्यापक ज्ञान और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर अचंभित रह गए और उन्हें तभी आभास हो गया कि ये किशोर भविष्य में देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने युवा जगजीवन से स्वयं मुलाकात की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आने का निमंत्रण दिया। बाबू जगजीवन राम के जीवन के कई पहलू हैं, उनमें से ही एक है भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान। कुशल राजनैतिक और असाधारण प्रशासनिक क्षमता की बदौलत बाबू जगजीवन राम 31 वर्षों तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री और बाद में देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। उनकी पहचान सुधारवादी राजनेता के रूप में रही। बाबू जगजीवन राम को भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा पर गर्व था। उन्होंने कहा था,
2: भारत कहीं बाहर नहीं गया और गया भी तो सारनाथ साक्षी है, बोधगया साक्षी है। यहाँ का एक राजकुमार और एक राजकुमारी सागर के पार गए थे, तलवार लेकर नहीं, बोधि वृक्ष के एक छोटी सी टहनी को लेकर गए थे, जीतने के लिए, दुनिया के साम्राज्य को नहीं, लोगों के हृदय को। और जीत लिया था, लंका को, बर्मा को, अनाम को, कंबोडिया को, जापान को और चीन को भी। वो गरिमा जो किसी के स्वतंत्रता को अपहृत नहीं करती बल्कि जो बंधन में है उसको भी मुक्त करने की कल्पना करती, भारत की गरिमा आज भी इसी में है।
1: समाज के प्रत्येक

0: वर्ग को उसका वाजिब हक दिलाने के पक्षधर थे बाबू जगजीवन राम।
1: समाज के उन वर्गों का जो अपने खून को पसीना और पानी बना करके बहा देते हैं, धरती के सीने में डालकर मिट्टी में से सोना निकाल लेते हैं, चमकता हुआ गेहूं दूसरों को खिला देते हैं, मनुष्य की सीमा का भी हद होता है, धैर्य की सीमा होती है, और धीरज की बांध जब टूटती है तो उसकी प्रखर धारा में कलुष तो धुलता ही है, सौंदर्य भी मिट जाए, मन मिट जाए, इसके लिए तो हमको सतर्क रहना होगा।
0: बाबू जगजीवन राम अपने संबोधन से सभी को मोहित कर लेते थे। वो भारत भूमि की आत्मा को जागृत करने की कल्पना रखते थे।
1: भारत महान तभी बना है और भारत में महान वही बना है जो अपने लिए कम जिया है, समाज और राष्ट्र के लिए जिया है। आज दुनिया को एक निर्देश की जरूरत है और मुझे लगता है कि निर्देश देने की क्षमता सिवाय भारत के और किसी में नहीं। मनुष्य को रोटी की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य को सिर्फ रोटी की ही आवश्यकता है ऐसा कह करके मनुष्य को मानव नहीं बनाया जा सकता, मनुष्य को किसी और खुराक की भी जरूरत है।
0: भारत माता की इस गौरवमयी संतान ने 6 जुलाई 1986 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बाबू जगजीवन राम के विचार। आलेख और स्वर था अरुण पांडे का। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता।
3: मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित बीमारियों की बात करें, जिसमें कॉमन कोल्ड है, कोराइजा है, कफ है, इन्फ्लुएंजा है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आती है, वायरल फीवर है, इन सब में जो होता है गले में दर्द, बुखार, नाक से पानी आना, छींक आना, जुखाम होना, इस तरीके की मलेज, बहुत ही हरारत से रहना, सुस्त रहना, इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं। और इसी के साथ साथ टॉन्सिलाइटिस भी कई बार हो जाता है, तो गले में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इसके आगे कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि वो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए नीचे तक चला जाता है लंग्स तक, और उसमें निमोनिया डेवलप हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है कि जो आपका लंग्स होता है उसके लंग्स के लोब को भी वो इन्फेक्टेड कर देता है, वो इन्फेक्शन वहाँ तक वायरस या बैक्टीरिया पहुँच जाता है और उसको कंसोलिडेट कर देता है उस एरिया को इन्फेक्शन से। उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत, घड़घड़ाहट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और आपको जो सर्दी जुकाम बुखार वाले जो सिम्टम है वो कॉमन आते हैं। ये आपके एयरबॉर्न डिजीज वाले संबंधित वाले कंडीशन आती है। दूसरी जो सबसे बड़ी कॉमन जो इन बीमारियों में इस बरसात में होता है वो पेट से संबंधित या दूषित जल या खाने से, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री और वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, जनरली आपको या तो उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, जो बार बार पानी की प्यास लग रही है, तास लग रही है, इसकी कंडीशन से मैं लोगों को विशेषकर ध्यान देना चाहूँगा डिहाइड्रेशन। ये जो सर्दी, ये आपका उल्टी दस्त और इस तरीके की गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन या टाइफाइड की वजह से क्या होता है कि आपको हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, आपके शरीर में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपका हाइड्रेशन कम हो जाता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इसकी वजह से आप हाइपोटेंशन में चले जाते हैं। कभी कभी इस तरह की कंडीशन में आपकी डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए इस कंडीशन में ज़रूरी है कि आप एक तो पानी जो है साफ स्वच्छ पहने और पिए, और साथ में ORS का घोल या नींबू चीनी नमक पानी का साथ में घोल लेते रहें। कई बार इस कंडीशन में पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, क्योंकि हम खाने में जो है बहुत तेल घी मसाले वाली चीज़ लेते हैं और वो इस समय पचता नहीं है, तो उसकी वजह से हमको कब्ज की बीमारी भी हो जाती है, मोशन कई दिन तक क्लियर नहीं रहता। अगर हम बात करें मच्छर जनित बीमारियों में, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन तीनों में जो लक्षण होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। एक काफ़ी कुछ कि जो उसमें फीवर काफ़ी तेज आएगा, जाड़ा देके बुखार आएगा, और उसके साथ साथ एक क्लॉकवाइज एक कंडीशन पे 24 घंटे या 18 घंटे या 16 घंटे इस तरीके के रोटेशन पे उस तरीके का बुखार आता रहता है। कई बार उसमें डेंगू की तरह सिम्टम आने की वजह से हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, लगातार आपको बुखार आता रहता है और टेम्परेचर 103.4-5 तक भी पहुंच जाता है। आपको हेमरेजिक कंडीशन भी कई बार आ जाता है, आपको स्पॉट्स उस पर मिलेंगे स्किन के ऊपर, वो छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं उसमें ब्लड आपको कैपिलरीज में वो बह जाता है और उसकी वजह से आपको प्लेटलेट की

0: की वजह से होता है, इस तरह की दिक्कत होती है। तीसरी चीज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें जो आपको सर्दी जुकाम बुखार वाले सिम्टम तो है, सबसे बड़ी बात इसमें तो ये जॉइंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। इसको आम भाषा में, बनारस की भाषा में हम लोगों को पब्लिक आके बोलती है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार में क्या हो रहा है कि मैं इसलिए आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अब चिकनगुनिया सब शायद न पकड़ पाए लेकिन लंगड़ा बुखार से शायद समझ जाए, क्योंकि पिछला जो अभी सीजन गुजरा है उसमें हर बनारस का बंदे ने इस अपने और अपने परिवार में किसी न किसी को ग्रसित देखा लंगड़ा बुखार से। और इवन उनको तो जो कष्ट हुआ ही हुआ, हम डॉक्टर्स को भी इतना पेन हुआ उसको कवर करने में, आज तक हम उसको फिजियोथेरेपी और सिकाई और इस तरीके की चीज़ों से आज तक उसको कवर कर रहे हैं और अभी तक कवर नहीं कर पाए। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है। उसके अलावा स्किन से संबंधित डिजीजेज जो होती है इनमें, क्योंकि स्किन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हम खुले कपड़े वगैरह नहीं पहनते, भीगे बदन रहते हैं, गीले बदन रहते हैं, उसकी वजह से घमोरियाँ खूब होती हैं। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रैसेज होते हैं और उसके खुजली बहुत ज़्यादा होती रहती है, पानी भी कई बार आते रहते हैं। खुजली की एक जनरल सी बीमारी स्कैबीज भी होती है, वो हो जाती है अर्टिकेरिया, जिसे आम भाषा में पित्ती उछलना बोलते हैं, कि लाल लाल उसमें चकत्ते से पड़ जाते हैं और खुजली काफ़ी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इस स्किन से संबंधित अगर हम बात करें तो इस ह्यूमिडिटी में टीनिया, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, दाद बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा कष्टकारी हो रहा है पेशेंट्स के लिए। महीनों सालों तक परेशान हो रहे हैं, इवन डॉक्टर्स भी दवा दे दे के, एक एक डोज दे दे के तीन तीन छः छः महीने खिला खिला के भी कवर करना मुश्किल हो रहा है। इसमें आप सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित होने के चांसेस रहते हैं। सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखें।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, बरसात के मौसम में होने वाली समसामयिक बीमारियां और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी की कलाकार थी वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। सुबह 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:45 पर सुनिए डॉक्टर श्यामा कुमारी का गायन और सुबह 7:31 पर डॉक्टर प्रभा अत्रे का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिए रुचि मिश्रा का गायन। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात्रि 9:30 पर। शाम 7:31 पर रसरंग और 8:15 पर रसमाधुरी प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सुनेंगे खरीफ में सब्जियों को हानिकारक कीटों से बचाएं विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से विशेष जानकारी। साथ ही सुनिए नीरज त्रिपाठी का गाया बनारसी कजरी। इन्हीं के गाए गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युवावाणी में युवा साथी सुनेंगे रजनी चौहान से काव्य पाठ। साथ ही साथ होगा यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कार्यक्रम धरती के गीत में अप्पा नाथ और साथी का गाया राजस्थानी गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे से। कार्यक्रम सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड का प्रसारण दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया में बहनें सुनेंगी गांव की सखी सहेली आशा और आंगनवाड़ी की भूमिका विषय पर आकांक्षा सिंह से विशेष जानकारी। साथ ही सुनिए गीत संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12 बजे से। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे से। सुबह 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का। इसी क्रम में सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। बने रहें आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के साथ।

0: दिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
1: हेलो मैं पूजा, पहचाना?
2: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
0: हाँ जी पूजा लेकर हाजिर हो गई हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी केंद्र पर। बनारस आज सुबह सुबह एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए आंख खुलते ही सबसे पहले आपने किसको देखा? अपने मम्मी पापा का चेहरा, ढलती खिलती सूरज की किरणें, या फिर अपने स्मार्टफोन की चमकती हुई स्क्रीन? बताइए। अरे बाबा पकड़े गए ना, हम में से 90% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जैसे देश के रक्षा मंत्री का सारा काम हमारे ही कंधों पर हो। सोशल मीडिया, ईमेल्स, मैसेजेस, उफ, हमारी उंगलियां स्क्रॉल करते करते थक जाती हैं, पर हमारा दिमाग कभी आराम ही नहीं पाता। इसी चक्कर में आजकल एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, डिजिटल फास्टिंग। जी हाँ, यानी स्क्रीन से कुछ देर की आजादी। अभी कुछ दिन पहले बनारस मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज देखी जो इसी टॉपिक पर बनी हुई थी, डिजिटल फास्टिंग पर, जहाँ पर ये दिखाया गया कि कुछ दिन डिजिटल फास्टिंग करने से घर परिवार में लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये जो लाइफस्टाइल हमारी डिपेंड हो गई है गैजेट्स पे और ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके ऊपर, इसके बिना जीना कितना जरूरी है ये भी बताया गया। कई बार होता है ना कि हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाती हैं, जैसा कि ये मोबाइल फोन्स हो गए, तो हम अपने घर में सबके साथ बैठे हैं, लेकिन हमारी बातचीत एक दूसरे से नहीं हो रही है, हम फोन के थ्रू मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हैं। सामने माँ बैठी है लेकिन माँ खाने में आज क्या बना है ये पूछने के लिए भी हम मैसेज का उपयोग करते हैं। आज की पीढ़ी जो सोच रही है कि सब कुछ फोन पर ही हो जाए, सब कुछ फोन से ही स्मूथ हो जाए, तो ऐसा ठीक नहीं है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, बाद में ये बहुत बड़ी परेशानी कर सकता है। मतलब हम अपनों से ही कटते जा रहे हैं, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कटते जा रहे हैं। पहले एक जमाना होता था सब आपस में मिलकर के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे, बर्थडे पार्टीज करते थे, मिलते जुलते थे, त्योहारों पे एक दूसरे के यहाँ आते थे। अब तो बस एक मैसेज और सारे विशेष मैसेज के थ्रू चली गई। गिफ्ट भी इमोजी के रूप में भेज दिया गया, खाने के लिए भी कुछ भेजना हो तो इमोजीज यूज कर लो। तो जनाब इमोजीज की दुनिया से बाहर निकलिए और आप भी हफ्ते में एक दिन तो डिजिटल फास्टिंग जरूर करिए। देखिए भाई, जैसे पेट को हल्का रखने के लिए हम व्रत रखते हैं ना, वैसे ही दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए भी डिजिटल फास्टिंग जरूरी है। अब आप सोचेंगे बिना फोन के कैसे जिए, तो सुनिए भाई बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करिए। पहला काम करिए नो स्क्रीन जोन। खाना खाते समय फोन को टेबल से कम 5 फीट दूर रखिए। खाने का स्वाद लीजिए स्क्रीन का नहीं। दूसरा डिजिटल सनसेट। सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालिए और एक अच्छी किताब पढ़िए या हल्का म्यूजिक सुन लीजिए। तीसरा संडे डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन, मान लीजिए संडे को, सिर्फ 3-4 घंटे के लिए अपने इंटरनेट डेटा को ऑफ कर दीजिए। विश्वास मानिए दुनिया तब भी चलती रहेगी। दोस्तों फोन हमारी सहूलियत के लिए बना था, हमें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं। तो आज एक

छोटी सी कोशिश करके देखिए, फोन को रखिए साइड में और अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया से जुड़िए। डिजिटल फास्टिंग करिए, थोड़ा करके देखिए, अच्छा लगेगा। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 11 अगस्त। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। बनारस देवाधिदेव महादेव के अति प्रिय सावन मास के दूसरे सोमवार को काशी शिव भक्ति में मगन रही। हर तरफ बाबा की भक्ति में रमे रचे श्रद्धालु उनके दर्शन और जलाभिषेक के लिए आतुर रहे। हर राह हर मोड़ पर केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे बोल बम करते हुए बढ़े चले जा रहे थे। काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में आस्थावानों का मेला लगा रहा। बाबा विश्वनाथ में हाजिरी लगाने के लिए भक्तों का ऐसा जमघट हुआ कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। सुबह बाबा का दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं को 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक डमरुओं के निनाद शंखनाद के बीच श्रद्धालुओं की अटूट कतार भगवान भोलेनाथ की भक्ति में नतमस्तक रही। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही शिव भक्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर विश्वनाथ दरबार में स्वागत किया गया। मंदिर प्रशासन के अनुसार सावन मास के दूसरे सोमवार को करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बनारस 80 साल पहले तक भारतीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस राष्ट्रीय गीत को प्राण प्रण से गाकर भारत को आजाद कराया था, उसी वंदे मातरम की गूंज भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर पहली बार सुनाई देगी। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह राष्ट्रीय गीत पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा। अगली खबर ये है, बनारस की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई है। समन्वयक डॉ. वरुण कुमार ने बताया कि समाज कार्य ज्योतिष हिंदी दर्शन संस्कृत हिंदू स्टडीज और भगवत गीता जैसे विषयों में प्रवेश इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन लिए जा सकते हैं। बनारस एक गुड न्यूज है, राखी का त्योहार करीब आते ही शहर के पोस्ट ऑफिस में चहल पहल बढ़ने लगी है। नौकरी पढ़ाई और दूसरे कारणों से घर से दूर रह रहे भाइयों तक राखी समय पर पहुंचे, इसके लिए बहनें अभी से बुकिंग करा रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पोस्ट की संख्या भी बढ़ी है। इसे देखते हुए इंडिया पोस्ट ने राखियों की बुकिंग और डिलीवरी के लिए खास इंतजाम किए हैं। बारिश के मौसम में राखियां सुरक्षित रहें, इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राखी बेचने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पोस्ट ऑफिस में स्पेशल राखी काउंटर की सुविधा दी जा रही है। इससे लोगों को राखी बुक कराने में आसानी हो रही है। खास तौर पर वे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जिनके भाई दूसरे शहरों या राज्यों में रहते हैं। राखी के साथ लोग पार्सल भी भेज रहे हैं, इनमें गिफ्ट कपड़े मिठाई और दूसरी चीजें भी शामिल है। अगली खबर ये है कि वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार से स्टेट लेवल जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता SAI NCOE के बॉक्सिंग हॉल में कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में 14 मंडल की 94 बालिका खिलाड़ी पहुंची हैं, जो 13 अगस्त तक रिंग जोन में जोर आजमाइश करेंगी। पहले दिन वाराणसी कानपुर आगरा और गोरखपुर मंडल का रिंग में दबदबा रहा। बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के लिए 13 अगस्त से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें MA सहित कई प्रमुख कोर्स शामिल हैं। अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए 13, 14, 18, 19 और 20 अगस्त की तारीख तय की गई है। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को उसी स्थल पर ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। तय समय में फीस जमा नहीं करने पर प्रवेश का दावा खत्म हो जाएगा। बनारस सावन के महीने में वाराणसी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार सुबह से ही शहर के आसपास में हल्के बादल छाए रहे, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सोमवार को वाराणसी का तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा की रफ्तार लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे और नमी 73% रही। मौसम में नमी अधिक होने के कारण उमस का असर भी महसूस किया गया।
बनारस गंगा की लहरों पर काशी से चुनार तक का सफर अब क्रूज के

0: ये करने का रोमांचक अवसर मिलने जा रहा है। जी हाँ, पहली बार गंगोत्री क्रूज वाराणसी से चुनार के लिए 3 दिवसीय यात्रा कराएगा। 4 से 6 सितंबर तक प्रस्तावित इस यात्रा में 60 यात्री शामिल होंगे। क्रूज प्रबंधन ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। अब तक गंगोत्री क्रूज का संचालन मुख्य रूप से रविदास घाट से नमो घाट के बीच किया जाता रहा है। पहली बार इसे काशी से चुनार तक विस्तारित किया जा रहा है। खास बात यह है कि गंगोत्री काशी में गंगा बस संचालित होने वाला ऐसा पहला क्रूज है जिसमें यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। इस वजह से वाराणसी से चुनार की यात्रा को पर्यटन के लिहाज से भी खास माना जा रहा है। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। १९२४ में आज ही के दिन लालमणि मिश्र का जन्म हुआ, जो भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे। 2020 में आज ही के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ। 1967 में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार, समीक्षक, साहित्यकार, आलोचक तथा संपादक नंद दुलारे वाजपेयी का निधन हुआ। और 1908 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का निधन आज के दिन हुआ। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। आज है 11 अगस्त और आज के दिन मनाया जाता है नेशनल सन एंड डॉटर डे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज का दिन बच्चों के नाम है, और इसीलिए आज का हमारा बनारस बीट्स का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज बनारस बीट्स कार्यक्रम में आपको हमें बताना है कि आपके बेटा बेटी से जुड़ी आपकी सबसे प्यारी बचपन की याद कौन सी है। बस 10:30 बजे आप आ जाइएगा कार्यक्रम बनारस बीट्स में अपने जवाब के साथ। और अब बात करते हैं बनारस उस सेगमेंट की जिसका रहता है आपको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो थे सपनों के जादूगर, बांग्ला साइंस फिक्शन के जनक और घनादा जैसे आइकॉनिक किरदार के रचयिता प्रेमेंद्र मित्र। बनारस बात शुरू होती है 4 सितंबर 1904 से, जब वाराणसी में जन्म हुआ था इस अद्भुत लेखक का। शुरुआत में उन्होंने डॉक्टर बनने की सोची, फिर एग्रीकल्चर और बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो बने कलम के ऐसे सिपाही जिन्होंने कविता, कहानी, जासूसी उपन्यास और साइंस फिक्शन की दुनिया को नए पंख दे दिए। बांग्ला साहित्य में जब लोग प्यार मोहब्बत की कहानियां लिख रहे थे, तब प्रेमेंद्र मित्र ने बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए बांग्ला साइंस फिक्शन लिखना शुरू किया। और उनका सबसे मशहूर किरदार कौन सा था जानते हैं आप? घनादा। जी हाँ, एक ऐसा किरदार जो चाय की टपरी या मेज में बैठकर पूरी दुनिया के अपने काल्पनिक कारनामों के किस्से सुनाता था। इसके अलावा उन्होंने भूत शिकारी, मेजोकर्ता और जासूस कवि पराशर वर्मा जैसे अविस्मरणीय किरदार भी गढ़े। इतना ही नहीं, बनारस, साहित्य के साथ साथ सिनेमा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और पटकथाएं लिखी। उनकी कहानी पर ही आगे चलकर महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने मशहूर फिल्म का पुरुष बनाई। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, उनके कविता संग्रह सागर संवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और रविंद्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 3 मई 1988 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए वो आज भी हर पाठक के दिल में जिंदा है। तो अगली बार जब भी आप कोई साइंस फिक्शन पढ़ें या कोई दिलचस्प जासूसी कहानी, तो प्रेमेंद्र मित्र जी को

0: याद करना न भूले। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
2: बनारस बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब कुछ बातें जरूरत वाली। देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर जूते गीले हो जाते हैं, है ना। मैंने कई बार देखा है कि बाहर बारिश में जब लोग भीग जाते हैं या सड़कों पर पानी भर जाता है, तो लोग अब सड़क पर हैं तो जो उन्होंने पैरों में पहना है, चाहे चप्पल हो चाहे जूते हो, वो गीले होंगे ही होंगे। चप्पलें तो सूख जाती हैं, लेकिन जूते वो गीले रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसे में उनमें स्मेल आने लगती है। धूप की कमी और हवा में ज्यादा नमी की वजह से जूते जल्दी सूख नहीं पाते हैं। इससे उनके अंदर बैक्टीरिया या फंगस पनपने लगते हैं। जी हाँ, नतीजा जूतों में स्मेल के साथ पैरों में खुजली, रैशेस और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। लगातार गीले या नम जूते पहनने से यह समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे में मानसून में जूतों की रेगुलर सफाई, उन्हें पूरी तरह सुखाना और सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे जूते अगर गीले हो जाएं तो उन्हें सही तरीके से कैसे सुखा सकते हैं आप। इंसोल और लेस निकालिए, पहला काम यही करिए। दूसरा, जूते में अखबार या टिश्यू भर दीजिए। तीसरा, हवादार जगह पर रख दीजिए। चौथा, पंखे या कूलर की हवा दीजिए। जूते उल्टे करके रखिए, अखबार बार बार बदलिए, तेज धूप से बचाइए और ड्रायर या हीटर से दूर रखिए। और रही बात दूसरी समस्या की कि जूतों की स्मेल कैसे दूर करें, तो इसके लिए भी कुछ आसान उपाय हैं, जैसे कि जूतों के अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा डाल करके 4-5 घंटे तक छोड़ दीजिए, यह स्मेल को ऑब्जर्व करता है। सूखे टी बैग जूतों में रखें, ये स्मेल और नमी दोनों सोखते हैं। इंस्टेंट फ्रेशनेस के लिए फुट डियो शू स्प्रे का इस्तेमाल करें। साफ और सूखे मोजे पहने, इससे स्मेल का रिस्क कम होता है। और अब सबसे जरूरी बात कि मानसून में किस तरह के जूते पहनना सबसे बेहतर होता है, तो ऐसे जूते चुनिए जो जल्दी सूखे और नमी न रुके, जैसे कि रबड़ या पीवीसी फुटवेयर, ब्रीदेबल स्पोर्ट्स शूज या वाटर रेसिस्टेंस जूते। जी हाँ, तो आई होप कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और फिलहाल अब समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, क्योंकि घड़ी सुइयां इशारा कर रही है कि समय हो गया है। तो बनारस बस जाते जाते एक ही बात करूँगी कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे ना, तभी हम औरों में खुशियाँ बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। सो डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी ट्यूसडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर

0: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया।
3: राज्यसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद कल लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: संसद ने कल ही बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। इस विधेयक को कल राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
4: The bill, among various other things that it wants to do.
5: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
4: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
2: लोकसभा ने कल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
6: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से रविवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में प्रदेश के खिलाड़ी गुलवीर सिंह और अस्मिता डे भी शामिल हैं। इस अवसर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
7: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं,

0: और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
0: वाराणसी में खेल की तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
2: जी सर, बहुत
0: कैसा बना है स्टेडियम?
2: सर अच्छा बना है, वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है। सर साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर, और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
0: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
1: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रदेश से जुड़ी अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और कुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है।
3: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
1: मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
3: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में ये तिरंगा लहराया जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे।
4: मुख्यमंत्री गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से निकलकर यह सड़क ग्रीन सिटी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में STP के समीप स्थित मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने OTS के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 संसद से पारित। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले

0: विधेयक को भी मिली संसद की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात, कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ, लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाकर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। और प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे का गायन, राग है देसी।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हमने सुना डॉक्टर प्रभा अत्रे का गायन। राग था देसी, तबले पे संगत था मुकुंदराज देव का। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है समाचारों का। आप सुनेंगे सुबह 8 बजे से समाचार प्रभात, 8:15 से मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर खबरनामा।

0: ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
2: छोटे मर्चेंट और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
3: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
4: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट

0: नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृहमंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवेंचरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
0: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा

0: अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers.
3: government notifies 11 more international

0: कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो, जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों की CBI जांच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और जिले इंतजामिया के साथ तआवुन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद की मौत हो गई जबकि 570 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैन जोस डेल पाल्मर के करीब वाक़ था, जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जलजले के बाद बहाली की कार्रवाइयों के लिए माली मदद की फराहमी में तेजी लाने की खातिर इमरजेंसी का ऐलान किया है। इतला है कि मुल्क भर में 20 से ज्यादा म्यूनसिपल्टियां जलजले से मुतासिर हुई हैं। पेरेरा, केपडो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वेडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, अगरचे वहां किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश होगी। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वसी महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते के दूरदराज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश हो रही है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के 9 जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर तोदे गिरने से तकरीबन 106 सड़कें बंद हैं, जबकि 66 ट्रांसफार्मर्स और 19 पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दीगर जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर मोहतात रहें और नदियों, नालों और लैंडस्लाइड के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक प्रोग्राम रियासत के तमाम मदरसों में जोश खरोश के साथ मुनक़िद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: अक़लियती बहदूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और नौजवानों को इस मुहिम में शिरकत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदरसों में कौमी परचम फहराने, कौमी तराना गाने, हुबुल वतनी और अजीम मुजाहिदीन आजादी के तावुन से जुड़ी बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की क्यादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुजाहिदीन आजादी آزادی کو خراج عقیدت ہے اور لوگوں سے اپنے گھروں میں فخر کے ساتھ قومی پرچم لہرانے کی گزارش کی. خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سوش

0: चंद्र तिवारी।
1: सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद आज कांवड़ यात्रा के इख्तिताम पर भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ मेले के 12 दिन कल 63,60,000 अकीदतमंद हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। हरिद्वार में डाक कांवड़ की बड़ी तादाद मौजूद है। इस यात्रा को महफूज तर बनाने की खातिर स्नान के बड़े घाटों, कांवड़ यात्रा के रास्तों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सेहत और सफाई सुथराई के इंतजाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्तलिफ मकामात पर कांवड़ियों की आमदोरफ्त के रास्तों में तब्दीली की गई है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना होने वाले अकीदतमंद आज अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। इस तरह इस साल कांवड़ यात्रा इख्तिताम को पहुँच रही है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: नाइजीरिया के लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपनी मुहिम का जबरदस्त तरीके से आगाज करते हुए 4 सोने के तमगों समेत 17 तमगे हासिल किए। तलवारबाजी की इस चैंपियनशिप का आगाज इतवार को हुआ था, जिसमें भारत ने 4 सोने के, 4 चांदी के और 9 कांसे के तमगे जीते। खवातीन के जुमरे में जॉयस अशिष्टा ने फॉइल में सोने का, जबकि कनक लक्ष्मी ने चांदी का तमगा हासिल किया। प्राची ने एपी में सोने का, जबकि निवेदिया नायर और अनुप्रिया ने कांसे के तमगे जीते। सेबर जुमरे में जैफलिन ने सोने का, आकारी ने चांदी का और श्रेया गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। मुल्क आज इनकलाबी मुजाहिद आजादी खुदीराम बोस के 119वें यौम शहादत पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। वो बंगाल के उन भारतीय इनकलाबियों में पहले फर्द थे जिन्हें 1908 में आज ही के दिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से फांसी दी गई थी। इस नौजवान इनकलाबी को याद करने और उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। खुदीराम बोस इंतहाई कम उम्र में भारत की तहरीक आज़ादी में शामिल हुए और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद के सबसे कम उम्र शहदा में से एक बने। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बरतानवी नौ आबादियाती राज को खत्म करने के मकसद से की जाने वाली इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के हवाले से सुर्खी लगाई है। सरकार तलबा के मसाइल पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन सरकार के मौकिफ को ध्यान से सुने, हंगामे से बचे। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, गोलाघाट में 52,000 अफराद मुतासिर। इसी अखबार ने कोलंबिया में आए तबाहकुन जल्जले और इसमें मुतअद्दिद हलाकतों की खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। एशियाई शेरों की तादाद 10 साल में बढ़कर 891 हो गई। रोजनामा प्रताप ने वजीर माहौलियात और जंगलात भूपेंद्र यादव के इस बयान को सफे अव्वल पर जगह दी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सार्फिन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैनुल अक्वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनक़िदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी वाराणसी है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा इस संदेश के बाद।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। <easy. laughs>

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658,
5: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा में।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आपको सुनवाते हैं फिल्म का गाना। पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म 1942 लव स्टोरी से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल हैं मुकुल दत्त के। फिल्म है 1942 लव स्टोरी।

फिल्म 1942 ट्रू लव स्टोरी से ये गाना आप सुन रहे थे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोपी किसन से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। संगीत है आनंद मिलिंद का और गीत के बोल हैं समीर के। फिल्म है गोपी किसन।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल विल प्यार व्यार से बाबुल सुप्रियो और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गाना, जिसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। फिल्म है दिल विल प्यार व्यार।

फिल्म दिलविल प्यार व्यार का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा आपके आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से। आगे चलते हैं और आपको सुनवाते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में फिल्म तेरे बिना का ये गाना, जिसे संगीत दिया है सप्तऋषि ने और गीत के बोल हैं नुसरत बद्र के। फिल्म है तेरे बिना।

आप सुन रहे थे तेरे बिना फिल्म का ये गीत। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म स्मगलर से, जिसे आवाज़

दी है अलका याग्निक और ईला अरुण ने। संगीत है बप्पी लहरी का और गीत के बोल हैं माया गोविंद के। फिल्म है स्मगलर।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और बागपत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में श्रावण मास के अवसर पर गंगा घाट और परियर घाट से पवित्र गंगा जल भरकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर, लोधेश्वर धाम और जलेश्वर नाथ मंदिर के लिए हजारों शिव भक्त पैदल व डाक कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े

0: इंतजाम किए गए हैं, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस बल द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया गया है। ASP अखिलेश सिंह के अनुसार जिले में लगे 248 सरकारी CCTV कैमरे पूरी तरह सक्रिय हैं। इनके अलावा यात्रा मार्ग पर लगे करीब 6,000 निजी CCTV कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। वह संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि भीड़, यातायात और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं गंगा घाटों पर पुलिस बल के साथ गोताखोर की भी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी बिजली के पोल और तारों की जाँच संबंधित विभागों से कराई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का खतरा न हो। इसके अलावा कांवड़ियों के विश्राम स्थलों पर पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह द्वारा घाटों व प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की लगातार जाँच की जा रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के साथ नरोरा और हरिद्वार बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण जिले में गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु पार कर गया है, जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने गंगा घाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जल स्तर बढ़ने से गोताखोर, तेजीपुरवा, करबला और हुसैन नगर जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुँच गया है। कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए 5 नावें तैनात की है। इसके अलावा गोताखोर, बलासाला और पंचायत घर को अस्थायी बाढ़ राहत शिविर के रूप में सक्रिय किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। जिले में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांस गंगा सिटी में पौधारोपण किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं, बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारी से जुड़ा जन आंदोलन बताया। अपर्णा यादव ने कहा,
1: पेड़ को हम पहले भी लगाते थे, पर माँ के साथ जब जुड़ जाता है तो वो बहुत स्पेशल हो जाता है। उसका संरक्षण करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया है कि वो पेड़ लगाएं और इस धरती को हरा भरा बनाए।
0: जनपद में इस अभियान के तहत लगभग 57 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित उन्नाव और प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। जिले के निराला प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद के शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरण कर बधाई दी। जहां जनपद में कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 20,265 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 लाख निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपहार दिया है, जिसे शिक्षक और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि आज योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, इसी के कारण देश प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
3: किसानों की मेहनत और बदलती कृषि सोच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, प्राकृतिक खेती और किसानों को बाजार से जोड़ने की प्रशासन की पहल, बागपत ब्लूम को बड़ा सम्मान मिला है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3rd नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड 2026 में DM अस्मिता लाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल सस्टेनेबल इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। समिट की थीम कृषि समृद्धि 2047 रही। DM की ओर से निवासी बागपत ब्लूम टीम, किसान प्रतिनिधियों और जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने पुरस्कार

0: करोड़ प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। बागपत ब्लूम के तहत किसानों को सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित न रखकर उपज की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। चिया बीज, अलसी, मोरिंगा पाउडर, सरसों का तेल, ऑर्गेनिक शहद, गुड़, खांडसारी, देसी घी और सिरका समेत कई स्थानीय उत्पाद एकीकृत ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से जिले के 13 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जुड़े हैं। प्रशासन का उद्देश्य फील्ड टू मार्केट मॉडल के जरिए किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आय बढ़ाना है। राष्ट्रीय सम्मान को बागपत के किसानों के नवाचार और कृषि क्षेत्र में बदलती तस्वीर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं की बेहतर निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बागपत, पिलाना और बड़ौत विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों को कार्डियो टोकोग्राफी यानी CTG मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह अत्याधुनिक मशीन गर्भस्थ शिशुओं की हृदय गति यानी फीटल हार्ट रेट की नियमित और सटीक निगरानी करती है। इसके साथ ही मशीन गर्भाशय में होने वाले संकुचन की भी जाँच करती है। इससे गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर नजर रखने और किसी भी संभावित जोखिम या जटिलता का समय रहते पता लगाने में चिकित्सकों की मदद करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार CTG मशीन विशेष रूप से प्रसव पूर्व उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी में उपयोगी साबित होगी। जांच के आधार पर चिकित्सक समय पर आवश्यक चिकित्सीय निर्णय ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बेहतर उपचार कराया जा सकेगा। CMO तीरथ लाल का कहना है कि इस सुविधा से गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही मात एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। बागपत परिवहन विभाग ने जुलाई महीने में राजस्व वसूली के साथ सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया है। विभाग ने जुलाई में शासन द्वारा निर्धारित 8 करोड़ 50 लाख रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 8 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व जुटाकर लक्ष्य को पार कर लिया। पिछले वर्ष की तुलना में भी यह राजस्व में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई तक पिछले वर्ष राजस्व वृद्धि 16,64,000 रुपए थी, जो इस वर्ष बढ़कर 25,27,000 रुपए तक पहुंच गई। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने शक्ति बढ़ाई है। 1 अप्रैल से अब तक यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों, बिना परमिट संचालन, बिना वैध दस्तावेज वाहन चलाने, ओवर स्पीड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ARTO विपिन कुमार के नेतृत्व में विभाग वाहन जाँच कर एवं परमिट सत्यापन और फिटनेस निरीक्षण के साथ डिजिटल सेवाओं को भी मजबूत कर रहा है। विकास वन सभागार में डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत ई लॉटरी से चयनित 28 लाभार्थियों को चयन पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा गो संवर्धन योजना के लाभार्थियों को अनुदान के चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में पशुपालकों को डेयरी और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर DM अस्मित लाल ने कहा कि डेयरी व्यवसाय किसानों और पशुपालकों की बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देना है। CDO अनिल कुमार सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पशुपालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मेरठ मंडल कार्यालय से वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अर्चना सिंह ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव के जीरो वेस्ट महोत्सव को लेकर सूचना विभाग का सोशल मीडिया चैलेंज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक व्यक्तिगत डिजिटल पोस्टर तैयार किए जा चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, DP व स्टेटस के जरिए लोग भक्ति भी, प्रकृति भी और आस्था भी, जिम्मेदारी भी का संदेश दे रहे हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी उन्नाव और बागपत जिलों की खबरें।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। आज के क्रम में हमें पहली सूचना प्राप्त हुई है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के अंतर्गत थाना सिगरा से। ये सूचना है सैयदा बीवी पुत्री जमाल अहमद निवासी D50/166 काजीपुरा।

नई सड़क वाराणसी की। ये दिनांक 16 मई 2026 करीब 4 बजे से लापता हैं। इनकी आयु 26 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल बताया गया है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी। आपको बता दें कि ये बादशाहबाग कॉलोनी थाना सिगरा वाराणसी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में एक सूचना हमें प्राप्त हो रही है, थाना जनपद चंदौली के थाना बलुआ से, जो जनक नंदिनी पुत्री स्वर्गीय संकटा प्रसाद निवासी कवर मड़ैया थाना बलुआ जनपद चंदौली की है। ये दिनांक 30/4/2026 रात 9 बजे से लापता हैं। इनकी आयु 15 वर्ष, कद 4 फीट 4 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल बताया गया है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने काला जींस और कत्थई कलर का टॉप पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप नज़दीकी थाने या थाना बलुआ जनपद चंदौली को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में थाना जिला मिर्जापुर थाना चील से प्राप्त सूचना के अनुसार, सूरज पुत्र गंगाराम सोनकर निवासी कमासीन चील मिर्जापुर, ये दिनांक 15 जून 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने शर्ट पैंट पहन रखी थी। इनके बारे में भी कोई सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना चील जनपद मिर्जापुर को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त कार्यालय मिर्जापुर थाना कछवा से प्राप्त सूचना के अनुसार, विशाखा सिंह पत्नी विवेक सिंह निवासी गहरवारी भीटी पोस्ट चील जनपद मिर्जापुर, जो दिनांक 24 मई 2026 दोपहर 2 बजे से लापता हैं। इनकी आयु 23 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इनके आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने छीटदार साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना कछवा जनपद मिर्जापुर को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में आज जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है, कमिश्नरेट कार्यालय जनपद बलिया के थाना रेवती से, काजल पासवान पुत्री सनोज पासवान निवासी शोभा छपरा थाना बैरैया जिला बलिया की है। इनकी आयु 17 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल है, कद 5 फीट बताया गया है। ये दिनांक 21/4/2025 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना रेवती जनपद बलिया को सूचित कर सकते हैं। ये था खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्लाह खान हाजिर है। सलामे मोहब्बत कबूल कीजिए। पल भर की मुलाकात है और कुछ भी नहीं है, पल भर की मुलाकात है और कुछ भी नहीं है, सोचो तो बड़ी बात है और कुछ भी नहीं है। जो ये छोटी मुलाकात जो हम उर्दू प्रोग्राम के जरिए करते हैं, ये मुलाकात हमारे लिए बड़ी कीमती है, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए ही हम अपने बाज़ौक सामीन से जुड़ते हैं और उनकी अदबी पसंद और उनके शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सामीन अज़ीज़,

0: हुए थे जिनको हमने कत्ल किया। शहर को दो दिन के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया गया और वो कौन है जो ये बता सके कि शहर के कोनों में कितने जख्मी शौहरों बेटियों और भाइयों का खून बहा। कोटेशन खत्म। बस यही सबब था कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अंग्रेजों यानी बरतानवी हुकूमत से वो नफरत पैदा हुई कि हर मुहिब्बे वतन बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत के दिल में अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को इन जालिम व बदकारों से मुल्क को आजाद कराने की एक लगन और तड़प पैदा हो गई। फिर उन्होंने अपने जानोमाल बल्कि मुल्क अजीज को आजादी दिलाने के लिए अपनी इज्जत व आबरू की भी परवाह न की। इस जंग में अवामो खवास के हर तबके मजहब के लोग शरीक थे। इनमें हिंदू मुसलमान सभी थे। इनमें मुसलमान उलमा और हिंदू पंडित मुजाहिदीन आजादी की हिम्मत अफजाई कर रहे थे। 1857 की जंग आजादी में शिकस्त के बाद हिंदुस्तान पर पूरी तरह हुकूमत बरतानिया का कब्जा हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों के सफाकाना इंतकाम और कत्लो गारत गरी का जो सिलसिला शुरू हुआ तो बेशुमार हिंदुस्तानियों को चौराहों पर फांसी दे दी गई और मुसलमान बतौर खास अंग्रेजों की बर्बरियत का शिकार हुए। लॉर्ड बर्न ने अपनी किताब हिंदुस्तान में 41 साल में 1857 के बाद के वाकयात में लिखा है कि कोटेशन 1857 की जंग आजादी में हिंदुस्तानी अवाम में शिकस्त खाने के बाद कौमी शऊर बेदार हुआ और इनके दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और अपने प्यारे वतन को इनके नापाक पंजों से छुड़ाने की लगन तेजतर हो गई। इसी सबब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम अमल में आया। बस इसके परचम तले हिंदू मुसलमान सभी मुत्तहिद होकर वतन अजीज की आजादी में जुट गए और ये तहरीक जिसे हिंदुस्तानी अवाम की पुरजोर और मुकम्मल ताईद के साथ मुल्क के बेहतरीन दिमागों का ताउन हासिल था एक जबरदस्त कुवत बनकर उभरी। बस फिर क्या था, इस आजादी की तहरीक ने जो तूफानी शक्ल इख्तियार की इसने अंग्रेजी साम्राज्य के मजबूत किले को हिला डाला। यहाँ तक के हिंदुस्तानियों को अपने वतन अजीज में इन जालिम सफाक हाकिमों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को यह जंग मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार हुई जो कि हजारों हजार सरफरोशों की कुर्बानियों का नतीजा है। इन जाबाज सिपाहियों जंग आजादी के मतवालों में हर फिरके हर समाज हर मजहब व मिल्लत के लोगों का ताउन शामिल है। इनके कौमी इत्तेहाद ने कौमी यकजहती की वो मिसाल कायम की जिसकी नजीर मिलना मुश्किल है। 15 अगस्त हिंदुस्तान के कौमी त्योहारों में सबसे ज्यादा अहम और खुशी का दिन है क्योंकि इसी दिन हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी और उनकी जुल्म ज्यादती से आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आधी रात में इन अंग्रेज जालिमों ने मजबूर होकर भारत छोड़ने का ऐलान किया और आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 15 अगस्त को हमें ये बेशकीमत आजादी नसीब हुई। हिंदुस्तान के हर फर्द ने 15 अगस्त को यौमे आजादी का दिन कौमी त्योहार के तौर पर मनाया। तमाम मुल्क में जगह जगह जलसों महफिलों का इनकाद किया गया। हर घर दुकान और सरकारी इमारत को रोशन चिरागों से जगमगाया गया। आसमान रंगीन गुब्बारों और पतंगों से गुलगुलजार हो गया। अपना कौमी तिरंगा लहराया गया। हर तरफ खुशी और आजादी का माहौल था और ये खुशी और आजादी का माहौल आज भी इसी तरह कायम है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। जंग आजादी के सिलसिले में माह अगस्त की ये भी एक बड़ी अहमियत है कि इसी माह अगस्त में आजादी हिंद से मुताल्लिक बहुत सी तहरीकें शुरू हुई और इसी माह अगस्त में हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम अवाम इस जंग आजादी की तहरीक में शरीक हुए और उन्होंने अपनी जान अपने बाल बच्चों की परवाह किए बगैर इस जंग आजादी को कामयाब बनाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारी कौमी गंगा जमनी तहजीब आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल हमेशा इसी तरह कायम और मजबूत रहेगी।
1: अभी आप ये तकरीर समाप्त कर रहे थे, जंगे आजादी में माह अगस्त की अहमियत, इस पर तफसील से रोशनी डाल रहे थे डॉक्टर मिसबा अहमद सिद्दीकी।

0: इसीलिए इसे झुककर सलाम करते हैं, इसीलिए इसे झुककर सलाम करते हैं। वतन है मादरे कौमी तो हम अयाले वतन, वतन है मादरे कौमी तो हम अयाले वतन। जवाब खून से देते हैं हम वतन के सपूत, जवाब खून से देते हैं हम वतन के सपूत। उठा है जब किसी गोशे से भी सवाले वतन, उठा है जब किसी गोशे से भी सवाले वतन। जमाना आके जो देखे तो फिर न वापस हो, जमाना आके जो देखे तो फिर न वापस हो। कोई तो बात है इसमें ये है कमाले वतन, कोई तो बात है इसमें ये है कमाले वतन। इस आने वाले जश्न आजादी में हमारी जानिब से बहुत मुबारकबाद कबूल हो। बाद मरने के तिरंगा ही कफन मेरा है, बाद मरने के तिरंगा ही कफन मेरा है। आप भारत जिसे कहते हैं वतन मेरा है, आप भारत जिसे कहते हैं वतन मेरा है। जी हां सामीन, शायरों ने अपनी शायरी के जरिए हुब्बुल वतनी के जज्बे को बरकरार रखा, तो आइए हुब्बुल वतनी के हवाले से समाप्त करते हैं डॉक्टर अशफाक जैदी से उनका ये खूबसूरत कलाम।
1: आइए सामीन, कौमी यकजहती के हवाले से एक गीत आपकी समातों की नजर कर रहा हूं।

0: इसकी जग में हमेशा शान।
1: डॉक्टर अशफाक जैदी के कलाम के साथ ये महफिल आ पहुंची है इख्तिताम की जानी। सामीन, ये प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के मरकज पर तरतीब दिया गया और आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से नशर किया गया। अपने मेजबान फरीदुल्लाह खान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। हम
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस छोटे से अंतराल के बाद
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं नीरजा त्रिपाठी की गाए गीत। तो आइए सुनते हैं नीरजा त्रिपाठी का गाया ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे नीरजा त्रिपाठी की आवाज़ में ये देवी गीत। आइए अब सुनते हैं नीरजा त्रिपाठी की ही आवाज़ में ये दादरा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना नीरजा त्रिपाठी के गाए देवी गीत और दादरा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मेरे लाल से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

आप सुन रहे थे फिल्म मेरे लाल का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इशारा से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

फिल्म इशारा का ये गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं फिल्म रंगोली से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत के बोल हैं शैलेंद्र के। फिल्म है रंगोली।

फिल्म रंगोली का गाना आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले ने, संगीत है मदन मोहन का और गीत के बोल हैं राजा मेहंदी अली खां के। फिल्म है मेरा साया।

फिल्म मेरा साया का ये गाना आप सुन रहे थे। आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म समाधि का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल हैं।

फिल्म समाधि का ये गीत आप सुने। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम झनकार, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म छैला से। इसे अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के। फिल्म है छैला।

फिल्म छैला से मुकेश की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बैराग का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी साहब के। फिल्म है बैराग।

फिल्म बैराग से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ है, संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत के बोल हैं शैलेंद्र के। फिल्म है तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर से ये गाना, जिसे अपनी आवाज़ दी है मन्ना डे ने। संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत के बोल हैं नीरज के। फिल्म मेरा नाम जोकर।

है चोरा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है, और इंसान ये

फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: फिल्म जीने की राह का ये गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए हम आपको सुनवाते हैं फिर फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है आन मिलो सजना।
1: तो हम चलते हैं।

आपने सुना आन मिलो सजना का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म उजाला का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के।

आखिरी गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म अपना देश से। इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस संगीत है आरडी बर्मन का और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। फिल्म है अपना देश।

अपना देश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम यानी मंगलवार के दिन का व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। 7905519981 कार्यक्रम का नंबर है और एक बार ही संदेश आप भेजेंगे। फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं शुरुआत में, तो शुरू में ही संदेश भेज दें। संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें, बार बार मैसेज ना करें, आपसे ही गुजारिश। आज की फिल्म है सावन को आने दो, जुर्माना, लोफर, पलकों की छाव में, सच्चा झूठा और नादान। सावन को आने दो, हालांकि सावन आ गया है, और इसके अलावा जुर्माना, लोफर, पलकों की छाव में, सच्चा झूठा और नादान। सबसे पहले फिल्म का नाम जरूर लिखें ताकि उस गीत के साथ आपका नाम शामिल हो सके। सावन को आने दो, जुर्माना, लोफर, पलकों की छाव में, सच्चा झूठा और नादान। बहुत शुक्रिया कि आप फिल्मों के नाम सुनते ही बड़ी तादाद में हमें संदेश भेजते हैं। एक बार आप संदेश भेज दें चाहे जिस भी फिल्म के लिए, तो फिर इंतजार करें आखिरी वक्त तक हमारे साथ बने रहें, और दोबारा या बार बार मैसेज ना करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा। हमारे केंद्र से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं, लेकिन पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में फरमाइशें न भेजें, वहां आई हुई फरमाइशें शामिल नहीं की जाती हैं। pkldaarvaranasi@gmail.com पर सिर्फ अपनी राय कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखें, और मेल भेजने के बाद दो चार हफ्ते इंतजार करें। देश भर के श्रोताओं के मेल आते हैं और सभी को हम लोग बराबर तवज्जो देते हैं, और कोशिश रहती है कि बारी बारी से सबको स्थान कार्यक्रम में मिले। सावन को आने दो, जुर्माना, लोफर, पलकों की छाव में, सच्चा झूठा और नादान, तमाम फिल्मों के लिए बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं आप सबकी, और अब शुरुआत कर रहे हैं गीतों के सफर का। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, फिल्म है सावन को आने दो, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आपकी फरमाइशें गीत के बाद।

जी आपने सही कहा, फिल्म का नाम है आया सावन झूमके। और सावन को तो आप सभी श्रोताओं ने आने ही दिया है, हम सब ने, क्योंकि इंतजार हम सबको था सावन का, गर्मी की उमस और जो परेशानियां हैं उससे निजात ये महीना देता है। तो गीत है, फिल्म है सावन, आया सावन झूमके।

जी हाँ, फिल्म थी आए सावन, झूम के लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। लेकिन सावन शुरुआत में तो बारिश अच्छी हुई, इधर 2-3 रोज से हमारे बनारस और आसपास ये कह सकते हैं कि बहुत तेज धूप हो रही है और वैसी बरसात नहीं हो रही है जैसा इस महीने के नाम से होना चाहिए। बहरहाल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें और फिल्म आया सावन झूम के इस गीत के लिए फरमाइशें आप सबकी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के श्रोता हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा और चैतन मस्किन। जमानिया गाजीपुर से हमें सुन रहे हैं और आपने बताया सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, शुक्रिया आपका। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल हैं आर्यनगर को का भिलाई से। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी की फरमाइश माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से आई है। प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े और प्रियाली हागोड़े हैं कष्टा बुजुर्ग अमरावती के श्रोता। आशीष कुमार हमें सुन रहे हैं महरेव जौनपुर से, शुक्रिया आपका। श्रवण कुमार, राजकुमार, ग्राम कुलारा, तहसील शाहकोट, जालंधर, पंजाब से। आपको ये बताएं कि हमारे केंद्र से जब भी आप फरमाइशें भेजते हैं तो ये जो कारोबार का नाम है, वो चाहे टेलर का काम हो, सैलून का काम हो, या कोई भी कारोबार हो, या श्रोता संघों के नाम हो, दुकान, प्रतिष्ठान, संस्थान का नाम हो, या आपसी संबंधों के नाम हो, वो न लिखें, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखें और जगह का नाम लिखें। तो उम्मीद है आप कहा मानेंगे हमारा। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा है छत्तीसगढ़ पलारी से। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज और फरदीन अब्बासी। एक संदेश में 2-4 ही नाम लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में संदेश आ जाते हैं, तो अधिक नाम हैं और कई जगहों के नाम हैं, तो एक नाम शामिल होने के बाद दूसरे नाम या नंबर से आप वो नाम भेज सकते हैं। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूरा नाम देवांगन है, पलारी छत्तीसगढ़ से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, गोरैया, जालंधर से हमें सुन रहे हैं। ये फरमाइश है पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया की। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। सलीम आजाद, मुश्ताक सुलेमानी, लंबे बाबू खान, शाहिद सद्दू रजानगर बजरडीहा से हैं। हालांकि इसमें शाहिद जी का नाम और जगह का नाम दोनों ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा है बठिना पाटन दुर्ग से। ये फरमाइश है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, बिल्कुल आपका नाम शामिल हो गया है, शुक्रिया आपका। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भगेलू यादव और मास्टर राम समुज यादव हैं वलीदपुर मढ़हा मऊ से। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू खान। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी। गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी हैं लेवाई छत्तीसगढ़ के श्रोता। ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद, बदरुद्दीन अंसारी, बजरडीहा, धरहरा, वाराणसी के श्रोता हैं। ये फरमाइश आई है।

रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान की फुले नगर अम्बीवली मुंबई से। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद हैं गिरिडीह झारखंड के श्रोता। आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी और निशा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। मोसीम अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी हैं मुश्ताक अंसारी के नाम के साथ कुटवा बनारस से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से आपकी फरमाइश आई। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा की फरमाइश नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। भुज कच्छ गुजरात से हैं रसिक, अशोक, रमेश और अशोक रबारी। आपने भी पेशे का नाम लिखा है, कृपया न लिखा करें। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा चंदन की फरमाइश कुम्हार गली कोलगांव से आई हुई है। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन और कृष्णा, साथ में पीहू स्वर्णकार, हकीकतपुरा मऊ से। कलारोर से ये व्हाट्सएप संदेश नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हैं मजनू का टीला दिल्ली से। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और परिवार के बाकी सदस्य। और अब गीत फिल्म जुर्माना से, लता मंगेशकर की आवाज से। बाकी फिल्में हैं लोफर, पलकों की छाओं में, सच्चा झूठा और नादान। फरमाइश आपने भेज दी है तो इंतजार करें, आपका नाम जरूर शामिल होगा और एक बार ही संदेश भेजें।

जी हाँ, सावन के झूले तो अब कहीं कहीं कभी कभी दिख जाते हैं। हालांकि कई जगहों पर जो सावन के मेले लगते हैं वहां पर तो बड़े बड़े झूले लगते हैं, लेकिन गाँव में या शुरुआत के दिनों में जब घरों में या नीम के डाल पर झूले लगते थे, वो दिन और उन दिनों की बातें कुछ और थी। उन दिनों की बरसातें भी कुछ और थी, क्योंकि आजकल ये जो हल्की फुल्की बारिश और उसके बाद तेज धूप हो जाती है तो उसका आवाज पे असर, सेहत पे असर पड़ता है। तो बचाव जरूरी है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग तो ख्याल रखने कह के भी अपना ख्याल कभी कभी नहीं आदमी रख पाता, या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप अचानक बाहर निकले और थोड़ा बहुत भींग जाते हैं। तो बहरहाल आप सभी का शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में बने रहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में संदेश हमें भेजते हैं। आपके उत्साह वर्धन के लिए शुक्रिया खासतौर से। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज और रिफत जहानाज ने इस गीत को सुनना चाहा जो जुर्माना फिल्म से। हमारे श्रोता हैं गुरजीत सिंह, गुरसुख सिंह नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और सद्दाम की फरमाइश कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से आई है। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम बानो, कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, डब्बू और बब्बू की फरमाइश है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और उमंग मलिक है मजनू का टीला से। अमरावती से सईद, सुफियान, अनस, सरोज चौक अमरावती से। इसी में नाम कुछ और एक जगह के एक ही श्रोताओं के नाम लिखें, और ये थोड़ा आपसी संबोधन वाले बोलचाल के दोस्ती के नाम ना लिखें, जो पूरा नाम हो सही वही लिखा करें। सुदामागर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। जलालाबाद वेस्ट से ये फरमाइश सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की आई हुई है। हेमंत सिंह, अमिताभ सिंह, अजय सिंह, गणेश त्रिपाठी, प्रदीप कन्नौजिया पटेल धर्मशाला तेलियाबाग वाराणसी से हैं। ये फरमाइश स्टेशन रोड जमशेदपुर से आई है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया की, साथ में तमन्ना भाटिया। अस्तुपुरा मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से। फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें सुन रहे हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन। सतीश शर्मा चंडीगढ़ के श्रोता है, बहुत शुक्रिया आपका।

इमरती यादव ग्राम भट्टी सकलडीहा चंदौली से, असगर अली अशोक कुमार प्रजापति, हालांकि दोनों ही नाम आपने भेजे हैं, तो हमारी ओर से और इमरती यादव की तरफ से शुक्रिया आपका। नाहिद अंसारी, राशिद अंसारी और साजिद अंसारी है नेवादा मुबारकपुर आजमगढ़ से। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु रिधान खुराना और इसमें नाम तुलसी मस्किन जी का भी है, शुक्रिया आप सभी का। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह हैं पद्म टॉकीज नेपानगढ़ से। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी हैं अहमदनगर बजडिया से। ये फरमाइश उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल की है, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ से आई हुई। चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी। श्रवण निषाद हैं उत्तर प्रदेश से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह की फरमाइश लोहगढ़ ठाकुरावाला से आई है। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया के श्रोता हैं और आनंद मिश्रा, ममता मिश्रा शिवपुर वाराणसी से हमें सुन रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, आपने हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, लेकिन आपको बताएं कि पहले जमाने में, हमें भी कई दशक हो गए इस माध्यम में, हर केंद्र पर और देश विदेश के केंद्रों पर श्रोता क्लबों का रजिस्ट्रेशन होता था और बाकायदा सभी सदस्यों के नाम पते, सदस्यों के नाम पते वहां पर होते थे। उस जमाने में हम लोग श्रोता क्लबों से राबता रखते थे खतो किताबत के जरिए या फिर कभी कभी उनके यहां जाकर के भी, लेकिन इन दिनों केंद्रों पर श्रोता क्लबों के विवरण नहीं है और रजिस्ट्रेशन की वो प्रक्रिया भी फिलहाल नहीं है, तो सिर्फ नाम और जगह का नाम लिखा करें। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। फिल्म है लोफर, मोहम्मद रफी की आवाज। बहुत सारे श्रोताओं ने फरमाइशें भेजी हैं इस गीत के लिए। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लोफर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज। फरमाइशें आप सबकी आई हैं इस गीत के लिए। अनिल, मानसी, गौरव, कविता मदान हैं, वीआईपी रोड, नई दिल्ली, मोतीनगर वेस्ट से। आपने लिखा है ऐप पर, दोनों ही ऐप का आपने जिक्र किया है, आवाज स्लो है, लेकिन हमारे यहाँ लेबल जो है वो हम लोग देख रहे हैं और वो पूरा मेंटेन है। ये नेटवर्क के कारण या फिर इस वजह से हो सकती है, आपके इलाके में नेटवर्क वगैरह की कुछ दिक्कत हो सकती है। वीरेंद्र बिहाण, सुरेंद्र बिहाण और शमशेर की फरमाइश जेवरा हिसार से आई है। हमारे श्रोता हैं अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया से, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुन रहे हैं हमें सोपान ताड़े, मोहन करांगले, ये फरमाइश है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया है पटेल नगर मलौट से, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ के श्रोता। निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर और गुरप्रीत सिंह, जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की फरमाइश रतलाम से आई है। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक, ये फरमाइश देवेंद्र ता

नाती राकेश, नाती प्रकाश, निशा कुमारी और रेशमा कुमारी की है। सुपाई साई झारखंड बड़ा बाम्बो से। हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और प्राची, साथ में तनु है बेरडी मध्य प्रदेश से। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले। हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिरबिड़े, सुमन गिरबिड़े की फरमाइश। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। दिनारा से हैं जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं। बासमत रोड परभणी से रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर और सृष्टि कारेगांवकर। बेरडी से अर्जुन गावनेकर, धीरज सवाश्रे और चंचल ढोमने की फरमाइश आई है। आप हैं ममता। अच्छा, ये जो मारकंडे से पहले ब लग जाता है, थोड़ा सा एक बार देख लिया करें। संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा की फरमाइश बलेरा टीकमगढ़ से आई है। ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़, आविष्कार और अनामिका गायकवाड़ की फरमाइश तामसा रोड हदगांव से। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। अजय सोनवणे, करिश्मा अविका और विशाखा मंगलकर है कोयते बस्ती पुनावेले से। नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जंजी राजपूत और दर्श राजपूत हैं बुंदेलखंड महोबा के श्रोता। ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी और सुशीलपुरी। आज का ये प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:34:36 का है। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म है पलकों की छांव में, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

की आवाज फरमाइशें आप सबकी हैं। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से हैं विनोद पुरी, वीपी रंजू और अशोक पुरी। संबलपुर कांकेर से फरमाइश फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की है। आप हैं जवाहर नगर उदयपुर से बाबू और भारती देवी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये की फरमाइश। ये फरमाइश गमरिया जमशेदपुर से आई है विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल की। रंजीत प्रसाद, सुधीर शुक्ला, डमरूधर गौंड और देवेंद्र साहू हैं बमरा संबलपुर उड़ीसा से। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। गंज डुंडवारा से हमारे श्रोता हैं शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा और अदनान खान। ये फरमाइश शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल की नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक हैं मुल्तानी ढांडा के श्रोता। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, मुराहू और देवंती जायसवाल। कोरिया से डोनट पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जालंधर से अशोक जाटो। चूंकि आपने लिखा है इग्नोर न कीजिएगा तो नाम देखिए, हमने इसी तरह से पढ़ दिए, लेकिन अगर अलग अलग जगहों के नाम हैं तो अलग अलग बार हमें संदेश भेजें या फिर अलग अलग नंबरों से भेज दें, क्योंकि सभी के साथ एक बराबर ध्यान रखना सभी का हमारा प्रयास रहता है ऐसा। गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुबाला, विवेक और पीयूषा हैं धुनधाड़ा ओसिया जोधपुर से। भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, समर्थ दादा देठे पाटिल और सानिका देठे पाटिल हैं बर्फ गांव नांदूरा से, धामड़ गांव से। एक ही जगह से एक संदेश में नाम भेजा करें। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान बाबू। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित और तानिया नारंग। जब भी आप ये मंडी डबवाली लिखते हैं तो आप देखें कि म के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है, डिंग पे लगता है ये। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी, भूपेश और दीपेश। देर पाटन गुजरात से धीरज बी रब्बारी हमारे श्रोता है। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य हमें लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तीन दिन हो गया है, रोज शाम 6 बजे बारिश शुरू हो जाती है, मानो ऐसा लगता है कि कुदरत ने घड़ी में अलार्म लगा रखा है 6 बजे का। तो अच्छा है बारिश के मौसम में बारिश अच्छी हो, ये खेती बाड़ी और प्रकृति और पर्यावरण के लिए जरूरी है। हमारे इधर तो कभी बारिश हो जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर एक दो रोज से तो इधर धूप बहुत तेज है। ततरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। प्यार भरी नमस्कार जी, जी प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग को, पंचकुला सेक्टर 9 के ये श्रोता है। बन बघेरा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सर्वा, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि की फरमाइश है। जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर हमें सुन रहे हैं। मुन्ना खान, जैबुन खान, साहिल खान, फातिमा खान है पलारी नगर पंचायत से। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हैं। इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान है गगन गन गोलादाता गंज बदायूं के श्रोता। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू आसमा और दीपक श्याम कुंवर। गाजीपुर गांव नारीपस देवराडीह बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। उमरखेड़ से रजाक खान, शबाना और जावेद खान। राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी यादव और कामेश यादव हैं सिंघाड़ तलाई खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में यह गीत है। हिंदी वर्ग के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

सच्चा झूठा फिल्म का गीत, युगल गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में इंदिवर के बोल और कल्याण जानन जी का संगीत था। फरमाइशें हमारे इन श्रोताओं की आई हैं। हमारे दो बेहद नियमित श्रोताओं ने शुरुआत में ही इसी गीत को सुनना चाहा। आप हैं श्रोता दंपत्ति अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से, और पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। दोनों से गुजारिश की नियमित रूप से आपकी प्रतिक्रियाएं आती थी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में, वो थोड़ा सा इधर से उसमें रुकावट है, तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर आप ही और तमाम दूसरे श्रोता भी कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर हमें पहुंचाएं pkld@varanasi.gmail.com पर। लेकिन तमाम श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि वहां फरमाइशी मेल न भेजा करें। समस्तीपुर बिहार से फरमाइश मीरा सिंह, ज्योति सिंह, अनामिका सिंह की आई है। राधेश्याम यादव नगदिलपुर गाजीपुर से हमें सुन रहे हैं। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से हैं। रतिनाथ त्रिपाठी, राखी, आर्या, एन्द्री, सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी। दिग्दर्शन और कविता गौंड

है मेरठ कैंट के श्रोता लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, जेल रोड रायगढ़ से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से हैं। ये फरमाइश अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोड़के और वैष्णवी घोड़के की छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से। गोपालापुर जौनपुर रमईपुर से हैं अवधेश तिवारी, अभी तक आप नाम पीरी का तिवारी ही लिख रहे हैं, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और राम आश्रय तिवारी, एक बार सही सही किसी से लिखवा लें, साथ में हैं बाबा यादव, उसके बाद वही भेज दिया करें, एक बार दिखा लें किसी को ये जो नाम आप भेजते हैं। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी और तनुश्री हैं दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। ये फरमाइश मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार की। राजपाल पंकज, काजल सीमा, मुकेश कश्यप, शीतल सोनू सुरेश हैं मुरादाबाद दुल्हापुर से। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी उच्च भट्टी बिलासपुर के श्रोता हैं। ये फरमाइश आई है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। महादेवपारा से मीरा, सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े। नारवा इंद्रो का जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी और ये फरमाइश विशाल मिश्रा की बंधवा बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से आई है। नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से, ममता रानी छवि अनोखी, देव देवांशु और डब्लू जी जी, विनोद मुड़त, नेहा जैन और दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा जी हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन के श्रोता। वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर और अलकमा खत्री। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विश्व खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा और शालिनी खेड़ा। आप हैं कस्बा गुनौर, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी और बेबी फरहीन गुन्नौरी। मोहम्मद जावेद खान, जावेद खत्री, इकबाल खत्री और जैद और मुनीरा महबूबपुरा सलावत से हैं। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की फरमाइश गोविंदपुरा सीकर से। अमरनाथ ये फिल्म का नाम है, उसके बाद वेड है, फिर यादव लिखा है। फुटहवा इनारा जौनपुर से हैं, मान लिया कि अमरनाथ यादव है। देख लिया करें संदेश थोड़ा साफ साफ आएगा तो वक्त भी कम लगेगा और आपका नाम सही सही शामिल हो पाएगा। विक्रम कणवासरा, सचिन सतीश, योगेश और युद्धव कणवासरा है हनुमानगढ़ राजस्थान से। मनरुदा का नाम इन्होंने लिखा। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और निशा। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा है गंगानगर राजस्थान से। और अब कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, फिल्म है नादान, मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

देखिए श्रोताओ, अब 6 मिनट हैं और अगर देखिए सिर्फ 6 मिनट लगातार नाम भी पढ़े जाएं तो क्या आपके नाम शामिल हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता बार बार हमें संदेश भेज रहे हैं और हमने जैसा हर बार प्रोग्राम में कहते हैं शुरुआत में ही आप फिल्मों के नाम सुने और संदेश भेज दें फिर इंतजार करें, वरना आखिरी वक्त तक जैसे अब संदेश 11:54:55 तक भी आ रहे हैं तो इन संदेशों को तो शामिल करना मुमकिन नहीं होगा, वरना सिर्फ 1 घंटे नाम ही बोले जाएं तो भी प्रोग्राम का समय कम पड़ेगा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और उनके पिताजी हैं नानक चंद मल्होत्रा। आनंद प्रसाद श्रीवास्तव है IMS BHU वाराणसी से और साथ में है निहारिका श्रीवास्तव चेतगंज से। अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान है गंगापुर वाराणसी से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित हैं रघुनाथपुरा गंगानगर से। डॉक्टर वंदना कुमार, नीलू मेघ, नीलम, बिट्टू कुमार और परिवार के सदस्य हैं राजधानी रायपुर से। बहुत दिनों बाद ये गीत आपने सुना, बहुत शुक्रिया आपको। मोहित तिवारी, राम शंकर तिवारी बाराबंकी के श्रोता हैं, स्वागत आपका। मुजफ्फरपुर बिहार से हमें सुन रहे हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। अवधेश तिवारी और फिर से वही नाम है, सुरेश तिवारी और कल्लू तिवारी गोपालापुर जौनपुर से। मुंबई से अनु बढ़ जाती है, शमसुल खान, अनुराज बैनारा की फरमाइश। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघु कुमार और भानु प्रिया। देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका और चंचल रानी साहू हैं बालोद छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश है बुजुर्ग से बिठल क्षीर सागर, प्रतिभा क्षीर सागर और अभिजीत क्षीर सागर की। चल चल चल चल। शिव मंदिर दाल मंडी से राजू और राजेश कुमार यादव। राजा बाजार बिहिया आरा से हमें सुन रहे हैं सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतिज्ञा केशरी, श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य और प्रमोद पंकज हैं गोला बाजार बक्सर से। लचनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, शिवम और सतीश। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी। गंगापुर से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार और स्नेहा कुमारी। दिलदार मीरी, ज्योति और जाह्नवी की फरमाइश जांजगीर चांपा से आई है। जबलपुर से हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह और अंकिता सिंह। असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। बेवरा संबलपुर से शिव दयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा। मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं। खंडवा से कुमारी दुर्गा तामोरिया, गौरव तामोरिया और कुमारी प्रभा रानी। धीरेन्द्र दुबे, विनिशा दुबे, दिव्यांशु दुबे हैं

सूर्यांशु दुबे विजयपुर आजमगढ़ से, जलगांव से दिनेश काले, वंदना काले और आदेश कुमार, परभणी से रुपेश संघई और महेश संघई की फरमाइश है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब हैं मुंगीसापुर से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद की फरमाइश फातिमा कानूनी श्रीरामपुर से आई है, राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा है सिरसा हरियाणा से।

पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन है छत्तीसगढ़ पंढरिया से, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही सहावर रोड गंज डुडवारा से हैं, बैंजो मास्टर सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का यादव, नौबत यादव, मोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से, बुलंदशहर से एम एस अब्बासी, कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, शाहिद हसन आजमी और सलीम जावेद, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव और सार्थक नामदेव, नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जयलाम से हैं छिंदवाड़ा बेरडी के श्रोता, मुरादाबाद दुल्हापुर से फरमान सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून, जौनपुर ग्राम मुरैना से हैं कुमारी चंदा कुमारी, चांदनी उनके माता पिता, फरमान सलमान इरफान नाम शायद अभी आपका शामिल हुआ है, अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति और शिव प्रकाश प्रजापति हैं कोरोता वाराणसी के श्रोता, शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी हैं मखदूम नगर बजडिया वाराणसी के श्रोता, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, स्टेशन रोड जमानिया के हमारे श्रोता हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी हैं पुरानी भिलाई छत्तीसगढ़ से। तो श्रोताओं ये थे आपके फरमाइशी नाम और आपकी पसंद के गाने। अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक

0: राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए, श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जॉनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
0: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे।

0: मैं सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सरजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
0: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
1: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी जी जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
1: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
0: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
1: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
0: जी,
1: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
0: नशाखोरी से दूर रहें,
1: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
0: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
1: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
0: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
1: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
0: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
1: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
0: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
1: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
0: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
1: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला।

0: बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।
2: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
3: हमारी मांगे
4: पूरी करो।
2: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
4: रोलेट एक्ट
5: वापस लो।
2: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
3: मारो,
2: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो।
3: डॉक्टर किचलू को
4: रिहा करो।
3: सत्यपाल को
4: रिहा करो।
1: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।
6: I said, fuck!

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: ए, ए, ए।

0: चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
1: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
0: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टाइम।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी मेरी लत सीधी करते मासी, मासी मासी मेरी लत सीधी
2: कर दिया, कर दिया।

0: Mani. Mani. Pani.
1: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
2: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
1: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
3: जनरल डार।
4: यस सर।
3: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
4: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
3: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
4: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
3: क्या वार्निंग नहीं दी?
4: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
3: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?

0: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
2: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बद्रुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
3: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वहीं हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
4: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
5: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
6: आप भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
4: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
3: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: छह एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
3: छह ती अठारह,
2: छह चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों

0: को जोड़ना नहीं सिखाएंगे।
1: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
1: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं? क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
1: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा? मैं खेलूं भी, पहाड़ा भी सिखाऊं?
1: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
0: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ, तुम खेलने चले जाते हो।
4: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा
4: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
3: फिर पहाड़ा कब?
4: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
4: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
4: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
4: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
4: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
0: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए
11: 0542227658।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें
12: 0542227658।
8: कार्यक्रम में कलाकार हैं रुचि मिश्रा। पहले सुनिए मीराबाई की रचना।

महादेवी वर्मा का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी रुचि मिश्रा। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर श्यामा कुमारी का गायन। राग है मेघ, तबले पर संगति की है निखिल बी भगत ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्यामा कुमारी का गायन राग था मेघ, तबले पर संगति की निखिल बी भगत ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ संतोष मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदल

दल ने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए।

0: न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रीति, पिता का नाम जलधारी, ये चीतारा महमूदपुर दीदारगंज आजमगढ़ की निवासी हैं और 10 मार्च 2026 से लापता हैं। प्रीति की आयु है 15 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था स्कूल ड्रेस। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को सूचना दें। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक सूचना के अनुसार गोपाल सिंह, पिता का नाम सुखदेव सिंह, ये भदवा चोलापुर वाराणसी के निवासी हैं और 4 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता हैं। गोपाल सिंह की आयु है 55 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। इनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर चोट का निशान है। ये आंशिक रूप से मानसिक तौर पर कमजोर हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था शर्ट पैंट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार तिलकधारी उर्फ अन्नु, पिता का नाम लक्ष्मण, ये हथियानी चंदौली उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और 26 मई 2026 की शाम 7 बजे के करीब से मरी माता मंदिर के सामने से लापता हैं। तिलकधारी उर्फ अन्नु की आयु 33 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की लोवर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंदौली को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात में 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। ये दोनों ही प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात में 9:30 पर कार्यक्रम अंजुमन में आप गैर फिल्मी गीत और गजलें सुन सकते हैं। शाम 6:30 पर किसान वाणी, ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा। इसमें आज खरीफ में सब्जियों को हानिकारक कीटों से बचाएं विषय पर डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे नीरज त्रिपाठी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण है आज की बात, रजनी चौहान का काव्य पाठ, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। सुहाने तराने कार्यक्रम होगा 2:30 पर। 1:15

15 मिनट पर कार्यक्रम अंगनैया में आज गांव की सखी सहेली आशा और आंगनबाड़ी की भूमिका इस विषय पर आकांक्षा सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके अलावा चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेब के मीटर न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब OTT पर उपलब्ध हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: आजमगढ़ की तीसरी कॉन्वोकेशन की तकरीब उत्तर प्रदेश की गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल की सदारत में इख्तिताम पजीर हुई। मजमुई तौर पर 74 तुलबा को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 26 लड़के और 48 लड़कियां शामिल थीं। इनमें से 11 तुलबा ने अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्रियां हासिल की और 63 ने पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्रियां हासिल की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को मजमुई तौर पर 20 मेडल्स से नवाजा गया। राम मंदिर के पहले सीईओ का इंटरव्यू आज से राम मंदिर के अहाते में शुरू हो रहा है। इंटरव्यू के लिए 18 उम्मीदवार फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। यह इंटरव्यू 2 दिन 11 और 12 अगस्त को होगा। इस साल के 80वें यौम आजादी की तकरीबात में यूथ पावर और 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में मुल्क के नौजवानों के तआवुन को उजागर किया जाएगा। कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 और 35 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अंगनैया कार्यक्रम सुनने वाली कुल बहनी लोगन के अपने सखी गुंजा का नमस्ते और संगे संगे लाजो तो हूँ के नमस्ते।
1: नमस्ते गुंजा दीदी और साथे में देखा अपन कार्यक्रम सुनने वाले भी सब बहनी लोगन के हमार नमस्ते।
0: तो लाजो।
1: हाँ दीदी
0: देखा हो सावन त आ गेल हो और ऐसने में देखा कितना नीक लगत हो ना सगरो हरियाली हरियाली नजर आवत हो। अब बाकी बरखा बुन्नी का अगर बात कहल जाए ना तो दऊ त कबो कबो इतना मनसा जाता हुआ कि झमाझम बरसत हुआ और कबो कबो देखत हो ना सवेरे से देखा तू कितना घाम घेरले हुए। ऐसने में देखा मनई के मन करेला कहियो जाए के बिना तो सोचे के पड़ेला कि भाई घाम हो गए। कहियो कहियो तो ऐसा होला कि कुल जनी अपन बनेले रही कि एक घड़ी जाए के हो कुल जनी के जुटा ली हन लेकिन फिर जब दऊ घाम करे लगे ना तो कहिए ना ना अब तो ना जाए के कहे से कि मन तो रहल कि जब बरखा बुन्नी हो चाहे तो बदरा घेरी तब चलल जाए लेकिन का करल जाए मौसम हो कभो बदल जाए ला एक का लेके चले के लेकिन ऐसने में लाजो।
1: हाँ दीदी
0: देखा हो अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखल जरूरी हो।
1: एकदम दीदी सही कहा तू। देखा इस जो ये समय मौसम चल रहा हो इनमें थोड़ा सचेत होके रहे का जरूरत हो कैसे कि देखा कभो घाम हो जातो कभो बरखा शुरू हो जातो और देखा जब बरखा हो तो ओके उनमें भीजे से बचे नहीं तो देखा तबियत बिगड़ सकला। देखा अपन जो बहनी लोग हैं वो तो अपने लेकिन बच्चा ना घर परिवार में सब केहू का ध्यान तो रखता है लेकिन उनके चाहिए कि वो अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देवे कहे से कि जब वो स्वस्थ रहियन तब भी वो अपने लड़का बच्चा खातिर अपने परिवार खातिर कर पहियन। और देखा छोट लेकिन बच्चे का बात करे थे तो देखा वो जब स्कूल जात है ना तो वो नहीं देखत हन कि कहाँ हिला किच्चा हो पानी में खेलत के आवत हन स्कूल से घरे।
0: हाँ भाई
1: ये सबसे उनकर तबियत खराब हो जाता हो।
0: एकदम सही कलु हो लाजो। ऐसने में देखा लेकिन बच्चन का तबियत ढेर खराब होता हो कहे से कि ऊ लोगन जानत ना हुए कि तनी से बरखा होए लगत हो तो बस निकल गईलन भरे भीजे कितनो मना कर ले में महतारी लेकिन माने वाले ना हुन। बाकी ई लोगन के तो दू घड़ी रोकल जा सकेला लेकिन जो स्वास्थ्य के बात कैलू है ना तो जो छोट बच्चन होलन भाई उनके भी स्वास्थ्य का देखल ताकल जरूरी है। और उनके सबसे बड़ी बात एक बता दी कहो वो टीकाकरण माने कि सही समय पे अगर

0: लेकिन बच्चन के टीका लग जाए ना तो उनकी जिंदगी में फिर स्वास्थ्य का परेशानी कम रहेगा
1: एकदम। दीदी देखा थोड़ा सा भी जब भी मौसम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बदलाव आवा तो बच्चन हाली हाली बीमार पड़ जाते हैं।
0: हाँ।
1: इस सब का कारण देखा कहीं ना कहीं हो कि आप लोगन बहनी लोगन कहीं लापरवाही कर दे
0: एकदम।
1: तो यही से देखा जब भी कोई के कोई गर्भवती है या कोई का छोट लेखन बच्चन है तो उनका टीकाकरण समय पे करवाए। और देखा जब बच्चा माँ के गर्भ में रहला तब से टीका लगे शुरू हो जाला, वही समय से उनका देखभाल करल शुरू हो जाला, टीका लगे शुरू हो जाला ताकि बच्चा और माँ दोनों जने स्वस्थ रहें। देखा टीका लगवले से जो बच्चन हन उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होला ताकि वो भविष्य में बीमार न पड़े। कभी कभी तो होला देखा छोट छोट बीमारी बड़ा बीमारी बन जाला।
0: हाँ, हाँ?
1: और कभी कभी तो जान का लेप देप भी हो जाए। यही से एक एक कहा जाला जीवन रक्षक टीका।
0: हाँ तो बहनी लोगन जो लाजो बतावत है ना इतना ज्ञान का बात तो बहनी लोगन ओके सुनी हा। आ हम तो जानत ही भाई एक थे देखा लाजो एक थे कार्ड भी बनेला लेकिन बच्चन का जो टीका लगवावल जाला ना ओकर एक थे कार्ड बनेला ओपे सब दिन तारीख महीना सब लिखल रहेला कि कौने तारीख के कौने महीना में कौन सा टीका लगी। तो बहनी लोगन जब के देखल करे ना कि 6 महीना पे टीका लगवाए के हो तो समय बीत गए ओकरे बाद देख ली
1: लेकिन
0: ना।
1: लेकिन देखा दीदी अगर कभी काम के चक्कर में अगर बहनी लोगन भूल भी गई ना तो हमें परेशान न हो अपने आशा बहन लोगन जो है या आपके गांव में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पे जाके अगर आप डॉक्टर भैया बहनी लोगन से पूरा बात बताइबू तो उन लोगन आपके समय के अनुसार बताएंगे कि ये टीका फिर से कभी लग सकला तो जरूर लगवा ले।
0: भाई सरकार जब इतना सुविधा दे रहा है ना तो हम लोगन के भी चाहिए कि इस सुविधा का लाभ ले। और देखा जब सरकार के सुविधा का बात की हल जाए तो देखा सरकार ऐसा ऐसा योजना चलावे ला ना बहनी लोगन के लिए भैया लोगन के लिए लइकन बच्चन के लिए जो जितनी भी महिला है मेहरारू है कुल जनी के लिए देखा सरकार की ओर से बहुत योजना चलेला
1: एकदम दीदी। और देखा अब सब बहनी भैया लोगन खातिर तो सरकार योजना चलेत लेकिन देखा अपने समाज में कई तरह का लोग रहलन।
0: हाँ, हाँ।
1: माने हर समुदाय का लोग रहलन तो सरकार चाहला कि सबके साथे लेके चले सब पर विकास करे तब अपन देश भी विकास करे। तो देखा अपने हर समुदाय के लोग खातिर सरकार कई तरह का योजना चलेले हैं उनके शिक्षा खातिर देखा वित्तीय सहायता देतन माने स्कॉलरशिप देतन ताकि उनका पढ़ाई रुके ना आगे पढ़े। और साथे में उनके जो उनका छोट छोट व्यवसाय वो अपन खुद का व्यवसाय शुरू करे जाता ओकरे खातिर ऋण भी देहल जाता।
0: भाई देखा जन सरकार अल्पसंख्यक भैया बहनी लोगन के लिए जो योजना चलावत हो ना ओकर लाभ लेवे के चाहिए। भाई ये योजना ए लिए चलावल जाता हो कि जेकरे पास भी भाई जो सुविधा ना पहुंच पावत हो ओके भी सुविधा मिल सके और वो भी समाज के साथे साथे अपन विकास कर सके आगे बढ़ सके। तो ये योजना का भैया बहनी लोगन लाभ लेवे और अपन जीवन का आगे स्तर सुधारे। लेकिन देखा इतना नीक बात कहे के बाद ना तो हम तो कहा थे ना लाजो कि एगो गीत गवनई हो जाए तब कार्यक्रम के फिर आगे बढ़ावल जाए। लेकिन हाँ गीत सुनने के पहले ये जो जरूरी संदेश हो के भी सुनल जाए।
1: हाँ जरूर दीदी सुनवा दा।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
3: ओ
2: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ
2: 0542227658।

0: अभी बहनी लोगन सुनत रहनी है इस गान। बाकी लाजो
1: हाँ
0: एक
1: दीदी,
0: बात कहब कि
1: हाँ
0: देखा अपने गवां में कुल बहनी लोगन के सब सुविधा मिल सके, एक खातिर देखा अपन आशा बहनी लोगन और आंगनबाड़ी के जोन बहनी लोगन हैं वो कितना काम करेली ना।
1: एकदम दीदी।
0: तो भाई आज भी देखा उन लोगन के खातिर अपने बहनी

0: लोगन के खातिर ई बात बतावे के लिए एगो बतकही लेके आवल गए लो, गांव का सखी सहेली आशा और आंगनबाड़ी का भूमिका। ए बारे में देखा एकर बतियले हैं शिखा श्रीवास्तव बहिनी आकांक्षा सिंह से। ता बहिनी लोगन एके सुने।
1: सुनिए।
2: श्रोता बहनी, आज हमारे साथ एक कार्यक्रम में आये हैं आकांक्षा सिंह जी। ये पंचायत सहायक हैं और आप लोगन के जानकारी दी हैं कि गांव का सखी सहेली आशा उनकर का भूमिका है हमन के गांव में विकास बदे और आंगनबाड़ी का भूमिका है। तो आकांक्षा सिंह बहन, आपका अपने कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करत है।
1: जी धन्यवाद।
2: बहनी लोगन के ये बताई कि आशा जौन होलिन उ का होलिन और आंगनबाड़ी होलिन उ का होलिन, ये एक होलिन की अलग अलग इनकर काम हो।
1: जी बहुत बढ़िया सवाल है कि जन सखी सहेली है इन आशा बहिन है इन आंगनवाड़ी बहिन है इन उ के होलिन और ये सब लोग एक होलिन या अलग अलग होलिन। तो सबसे पहले आपके बता दही कि ये लोग अलग अलग होलिन, इनकर अलग अलग काम होला, लेकिन विकास के क्षेत्र में इनकर जो उद्देश्य है वो एक है। ए तहत इनके एक कहल जा सकला, लेकिन ये लोग का जौन व्यक्तित्व है वो अलग अलग है।
2: अच्छा, तो आशा बहिनी का का काम करेली?
1: आशा बहिन आमतौर पे आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी काम के लिए जिम्मेवार है। आपके बच्चे के टीकाकरण, महिला के टीकाकरण या ग्राम सभा में जितना भी व्यक्ति हन कोई रोकथाम के लिए टीकाकरण का व्यवस्था है तो ऊ तक आप तक के पहुंचावे का काम कर लीन। और जो आपके बच्चा के, आपके गर्भवती महिला के या किशोरी जो है इन गांव की लड़कियां, हमरे बहनी लोगन के सब करे स्वास्थ्य के देखभाल करे के जिम्मेदारी आशा बहन लोग का हो।
2: अच्छा, मतलब जेके अगर घरे में केहू बीमार है, चाहे गर्भवती है, चाहे बच्चा के कोनो समस्या है या टीका लगवावे के है, तो आशा बहनी घरे घरे जाके ले आवेलिन।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा, आंगनबाड़ी का काम होला?
1: आंगनबाड़ी का देखा बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जौन आपके बच्चा हन, छोटा छोटा बच्चा होलन 0 से 6 साल तक का, उनके पोषण का ख्याल रखब और गर्भवती महिला और धात्री माता जौन होलिन ओ लोग के पोषण का ख्याल रखना आंगनवाड़ी का जिम्मेदारी है। और जौन छोटा बच्चा होलन 6 साल से कम उम्र का, उनके शिक्षा का जौन प्राथमिक शिक्षा होला वो भी आंगनवाड़ी बहन जी के तहत होला।
2: अच्छा, कैसे ख्याल रखे ली नहीं हो बता दी?
1: ए तरीके से कि हमरे जन सरकार के तरफ से पोषक आहार आवला ओके हर पात्र बहिन लोगन तक पहुंचावलीन, चाहे वो बच्चा के लेके हो या गर्भवती महिला के हो या धात्री माता के हो।
2: अच्छा, तो ई जो आहार आवेला, पोषक आहार आवेला, मन कौन कौन चीज मिलेला आ इहो जानल चाह कि ई आवेला कहाँ से, मतलब केंद्र सरकार से मिलेला कि राज्य सरकार से मिलेला, कौन जगह से आवेला?
1: जी सबसे पहले बता दही कि पोषक आहार में काका मिलला, तो उमन दलिया हो जाला, मूंग दाल का मिश्रण हो जाला, चना का दाल हो जाला, घी हो जाला और कुछ कुछ जगह पे चीनी वगैरह और तेल वगैरह का भी व्यवस्था होला।
2: अच्छा।
1: और अभी आप हमसे पूछलीन है कि ये कहाँ से मिलला, कौने सरकार के तहत मिलला, तो एमन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का बराबर हिस्सेदारी होला, दोनों का बराबर सहयोग होला। कुछ क्षेत्र में जन मान्यता प्राप्त पहाड़ी क्षेत्र होलन जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे जन केंद्र सरकार का योगदान है वो 90% और जो राज्य सरकार का है वो 10% होला। एकर एक कारण बता सकीला, ऐसे कहे कि जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां तो वो लोगन के केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी में ले आए बदे कुछ विशेष तहत योजना चलावलन, एकरे वजह से वहाँ पे केंद्र सरकार का भूमिका अधिक होला।
2: अच्छा, आप ऐसे स्वास्थ्य का बात कहली ना कि स्वास्थ्य का भी सुरक्षा करेली आंगनबाड़ी और आशा बहनी, तो उमन टीकाकरण का भी व्यवस्था होला? हा?
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो ये कौन कौन टीका वहाँ लगवावल जाला, तनी एकरे बारे में फरिया के बहनी लोगन के बताए?
1: जी सबसे पहले शुरू कर दे थी गर्भवती महिला से। गर्भवती महिला के जो टीटी का टीका लगला, मतलब टीटनेस का टीका लगला, वो हमरे आशा बहन जी के द्वारा शुरू करल जाला। ओकरे बाद से बच्चा के प्रसव से लेकर के बच्चा जब तक बड़ा होलन, 5 से 6 साल तक के उम्र तक का होलन या उसे बड़ा तक का होलन, किसी विशेष रूप में कोनो टीका का आवश्यकता होला तब तक आशा बहन जी लगावलिन। जैसे कि जन्म के समय बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, और 6वें सप्ताह से

0: ओपीवी का टीका और तमाम टीका जोन भी प्रचलन में रहला और 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में, 9 से 12 माह में, 16 से 24 माह में और 5 से 6 साल की उम्र में भी अलग अलग टीका लगल करला।
1: अच्छा, अगर कोनो टीका छूट जाए तो
0: कोनो घबराए का आवश्यकता तो नहीं है। ओकर दो पहलू समझल जी, एक आप गलती से भूल गल हन और दूसरा ये कि आप लगवाए नहीं चाहत हन। अगर गलती से भूल गल हन तो घबराए का कोई आवश्यकता नहीं हवे, आप अपने आशा बहन जी से मिल ले और गांव में जो व्यवस्था बा हमने को बहुत अच्छा बा, आशा बहन जी खुद ही टाइम भइले पे आपके बता देवलिन कि आपके बच्ची के टीकाकरण का समय आ गल हो तो आप लगवा सकरन। लेकिन मान लो कोनो दशा में अगर भूल गल तो आप टीका व कार्ड जोन होला आपके मिलल हुई ऊ लेकर के आप अपने आशा बहन जी के पास जा सकलीन, एनम बहन जी के पास जा सकलीन या नजदीकी में कोई स्वास्थ्य केंद्र हो तो वहां जा सकलीन। जोन डॉक्टर हुई हन टीका कार्ड देख ली हन, आपके बच्चे की उम्र देख ली हन और पिछले जोन टीका लगल बा ऊ सब के आधार पे आपके सही से जानकारी दे दी है।
1: अच्छा, मान लें कि अगर केहू बहनी गर्भवती है हा? तो ऊ आशा बहनी से अगर संपर्क करत है, करल चाहत है तो अगर ऊ संपर्क कर लेती तो उनका जोन प्रसव होला वो प्रक्रिया में इके निर्धारित करे कि इनके यहाँ ले जाए के है या आशा बहनी ये तारीख के यहाँ ले जाइए, कैसे कुल निर्धारित होला?
0: सबसे पहले अगर हमारे कोनो बहनी लोगन के ई जानकारी में आगल कि वो लोग गर्भवती है तो सबसे पहले एक जानकारी अपने आशा बहन जी के दईहन। ओकरे बाद जैसन की पहले ही बता चुकल है कि जोन पोषण आहार होला वो उनके मिले लगी और समय समय पर जोन टीका हो लगी ओकरे बारे में जानकारी मिली और प्रसव के बारे में पूरी जानकारी गांव में सखी सहेली बहन जोन होलीन, आशा बहन जोन होलीन आपके पूरी तरीके से बता दी हन और स्थिति अगर ठीक हो तो आशा बहन जी आपके बता दी हन कि कहाँ पे आपके प्रसव करवाए के हो। काहे कि एक ही होला मुख्य स्वास्थ्य केंद्र, एक ही तो आपके गाँव में होला है ना, वहां पे आपका कुछ डॉक्टर होलन, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होलन लेकिन जो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र होला वहां पे एक डॉक्टर का टीम होला।
1: अच्छा,
0: तो अगर कोनो स्थिति विशेष ना बा तो आप लोग जा सकलीन वहां पे भी और अगर नॉर्मल बात तो कोई दिक्कत नहीं बा, वहां पे आशा बहन करा दी है ना, आपका देखभाल उनकर जिम्मेदारी बा और वो लोग बहुत बखूबी निभावली तो चिंता करे की आवश्यकता नहीं है, आशा बहन जी से संपर्क जरूर कर लेना।
1: अच्छा, अगर प्रसव का समय आ गई है चाहे गर्भवती बहन बहलीन अगर गर्भवती महिला है गाँव में तो उनके बदे सरकार की ओर से भी तो कुछ सहयोग राशि मिलेगा ना, ये हम सुन ले है।
0: जी जी बिल्कुल, अगर पहला बच्चा जो होथन ऊपर उनके चाहे लड़की हो या लड़का हो 5,000 का सहयोग राशि मिलला और जब दूसरी संतान होलीन अगर पुत्री होथिन यानी बेटी होथिन तो ऊपर उनके 6,000 का प्रोत्साहन राशि मिलला।
1: अच्छा, तो ई राशि मतलब इकट्ठे मिल जाएगा कि बारी बारी से?
0: बारी बारी से मिलला।
1: अच्छा, कब दो दो, मिली?
0: दो दो किस्त में मिलला।
1: अच्छा, तो एक तरह से उनके सरकार की तरफ से भी एक लाभ होला। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण आप जानकारी देते हैं आशा बहनी के बारे में, आंगनबाड़ी के भूमिका के बारे में, कैसे सब लोगन मिल के सहयोग करके गांव के विकास में सहयोग देत है। अगर न रहे तो आपके का लगेला गांव का स्थिति का हुई अगर आशा बहनी न रहे आंगनबाड़ी न रहे तो?
0: एक शब्द में अगर कहल जाए तो अगर सखी सहेली बहन आशा बहन और आंगनबाड़ी बहन न रहे तो गांव बिल्कुल वैसे ही रही जैसे कि बिना सूरज के दुनिया बा। एक तरीके से हम बतावे चाह कि हमने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना रहल कि गांव सर्वांगीण विकास करे, वही सपना के साकार करे बदे हमार जो वर्तमान सरकार है वो समय समय पर अलग अलग कदम उठावत रहलन और वही का नतीजा है कि हमारे गांव में सखी सहेली बहन आशा बहन और आंगनवाड़ी बहन का नियुक्ति करल गल है जो कि आपके समय समय पर आपके आवश्यकता के अनुसार आपके योजना के जानकारी देवे, ओकर लाभ दिलवावे और आपका सहायता करें।
1: अच्छा, आशा बहनी के तो अलग समझे आदमी की कोनो जरूरत पड़ल तो, ये जो सखी सहेली है इनके कैसे अलग से आप फरियाब की सखी सहेली है ये आशा है?
0: दिखा अब इस पर हम ही बता दी कि उन लोग का काम का है तो खुद समझ में आ जी। जो सखी सहेली है उनका काम होला कि आपसे एकदम सहेली के रूप में बात करी हन।
1: अच्छा।
0: आपके बिना जज गईले आपसे एकदम प्रेम पूर्वक आप बिल्कुल आपन होके बात करी हन।
1: अच्छा।
0: और आप एकदम सहज होके अपन प्रॉब्लम बताई हन तो आपके सही जानकारी भी दे दी हन। और जो आंगनबाड़ी बहन होलीन जो उनकी पहले ही बता चुकल है कि उनका का काम हो तो उन आपके पोषण

0: का ध्यान रखी हन, आपके बच्चा का प्राथमिक शिक्षा का ध्यान रखी हन, और जन आशा बहिन है उन आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी सभी सहयोग आप तक पहुंचे हन।
1: बहुत नीके का फरिया के अलगे अलगे सबके भूमिका के बारे में बतौलिन बहनी लोगन के, चलत चलत बहनी लोगन से कुछ कहल चाह।
0: जी हाँ, जरूर कहे चाहब कि चलते चलते हम बहनी लोग आप लोग एक संकल्प करें कि आज से अभी से अगर आपकी आवश्यकता हो तो अपने गांव में जोन आशा बहिन है, जो आंगनवाड़ी बहिन है, या जोन सखी सहेली बहिन है, उनसे संपर्क करत जा, अपन अपन समस्या बतावत जा और कुछ चीज के अपने दैनिक जीवन में ओके अपना बच्चा, जैसे साफ सफाई का ख्याल रखा, आपके घर में जो लड़की वाइन वो लोग के समय पर देखभाल करा, उनके पोषण का पूरा ध्यान रखा, और अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव का आवश्यकता है जो उनके करत जा, जैसे कि अपने घर के बाहर आस पड़ोस में या गांव में कहीं भी गंदगी दिखे तो ओकर जानकारी देवे, अगर साफ करे लाखो तो कर देवे, अगर न कर पावे तो अपने गांव में जो सफाई कर्मी हन उनसे संपर्क करे, और जो अगर कोई जानकारी चाहत हो तो ओकरे लिए आप अपने पंचायत भवन पे संपर्क करे। अगर आपके गांव में आशा बहिन, आंगनवाड़ी बहिन या सखी सहेली बहिन नाही बहिन तो ओकरे लिए भी आप संपर्क कर सकलिन कि नाही बहिन तो कहा, अगर आप ओकरे लिए सक्षम हैं तो आप भी फॉर्म भर सकलिन, आप भी अपने गांव का सेवा कर सकलिन।
1: बहुत बढ़िया बात बतौलिन आकांक्षा सिंह बहिन, आप हमारे कार्यक्रम में लीन और गांव का सखी सहेली आशा और आंगनबाड़ी के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी बहनी लोगन के देलिन, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा दीदी, अभी बहनी लोगन सुनत रहलिन कि गांव की सखी सहेली आशा और आंगनबाड़ी लोग का भूमिका हो, ए विषय पे आकांक्षा सिंह से शिखा श्रीवास्तव बहनी बतियावले रहलिन। आ देखा आकांक्षा सिंह कितना फरिया के अनेक का जानकारी देली न कि आशा बहन लोगन का होलिन, आंगनबाड़ी लोगन का काम होला। लेकिन देखा दीदी, हम कहीं कि एक बहनी लोगन के और गीत कहे न सुनवा देवल जाए।
3: अरे लाजो, जब से सावन आयल हो ना तो देखा था भाई तोहार ध्यान गीत गवनई की ओर ज्यादा हो, तो काहे ना भाई तोहरे संगे संगे हम लोगन भी सुनल जाए, बहनी लोगन भी सुनल जाए।
2: एकदम दीदी,

तो बहनी लोगन अभी सुनत रही हैं आशा भोसले के आवाज में ये गीत लाजो। एक बात बस और कहल चाहब ना कि देखा बरखा बुन्नी का दिन हो, ऐसने में भाई अपन ध्यान रखे के चाहिए, अपने लइकन बच्चन और घर परिवार का ध्यान रखे के चाहिए। लेकिन देखा हो समय देखल जाए ना तो घड़ी भी कहत हो कि अब चले का समय हो गए, तो बहनी लोगन से कहल जाए नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नीरजा त्रिपाठी। पहले सुनिए इनकी गाई एक कजरी।

0: IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Swiatek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
4: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष

0: लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
1: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृहमंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म

0: लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होने

0: जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।
2: सुहाने तराने कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी डिटो दोस्त पूजा। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, 1970 का दशक, क्या दौर था वो भी, है ना? बेल बॉटम्स, लंबी जुल्फें, बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट्स और सबसे बढ़कर वो म्यूजिक जो सीधे दिल में उतर जाता था। आज के अगले कुछ मिनट हम बात करेंगे 70s के ऐसे आइकॉनिक गीतों की जिनकी मेकिंग स्टोरीज किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि पहला तराना सीधे आ रहा है 1974 की फिल्म वो कौन थी से। हालांकि 60s के आखिर का है लेकिन 70s के रेडियो एरा का सबसे बड़ा सुपरहिट बना लग जा गले। लता मंगेशकर जी की मखमली आवाज और मदन मोहन जी का कंपोजिशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक राज खोसला को यह गीत पहली बार में बिल्कुल पसंद नहीं आया था? जी हाँ, उन्होंने इसे फिल्म से लगभग रिजेक्ट कर दिया था। तब मनोज कुमार साहब ने इस गीत को सुना और राज खोसला जी से कहा, एक बार फिर सुनो, यह गीत इतिहास रचेगा। राज खोसला जी ने दोबारा गीत सुना और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कहते हैं कि मदन मोहन जी रिकॉर्डिंग के बाद इतने भावुक हो गए थे कि लता जी को गले लगाकर रो पड़े थे। आइए सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाने तराने और ये था लग जा गले। और अब रुख करते हैं 1975 की उस ब्लॉकबस्टर की तरफ जिसने सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, शोले।

जब आर डी बर्मन यानी हमारे पंचम दा महबूबा महबूबा बना रहे थे तो वो कुछ ऐसा चाहते थे जो एकदम अलग हो। इस गीत में जो शुरुआत की हुकिंग साउंड है वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की नहीं है। पंचम दा ने कांच की खाली बोतलों में फूंक मारकर वो आइकॉनिक ट्यून बनाई थी। और तो और इस गीत को किसी सिंगर से गवाने के बजाय उन्होंने खुद अपनी कड़क और यूनिक आवाज में रिकॉर्ड किया। चलिए कमर कस लीजिए क्योंकि अब बजने वाला है हेलन जी का डांस नंबर और पंचम दा का मास्टरपीस महबूबा महबूबा।

क्या एनर्जी थी पंचमदा की, है ना श्रोताओं। अब थोड़ा सा माहौल में प्यार और रोमानियत घोलते हैं। साल 1976, फिल्म कभी कभी। साहिर लुधियानवी साहब ने एक नज्म बहुत पहले लिखी थी। जब यश चोपड़ा जी ने यह फिल्म बनाने की सोची तो संगीत की जिम्मेदारी खयाम साहब को मिली। मुकेश जी की आवाज में जब यह गीत रिकॉर्ड हो रहा था तब खयाम साहब ने सेट पर ऑर्केस्ट्रा को बहुत धीमा और सॉफ्ट रखा ताकि साहिर साहब की शायरी का एक एक शब्द साफ सुनाई दे। इस गीत ने उस साल सारे म्यूजिक अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। सुनिए अमिताभ बच्चन और राखी जी पर फिल्माया या खूबसूरत नगमा।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है सुन रहे थे अभी आप। श्रोताओं, 70 का दशक हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर था जहां एक तरफ एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो रहा था तो दूसरी तरफ संगीत में आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। आज हम चलेंगे उसी जादुई दौर की गलियों में। साल 1974 में आई फिल्म आपकी कसम का गीत जिंदगी के सफर में आज भी जब कानों में पड़ता है तो मन उदास होते हुए भी एक सुकून महसूस करता है। किशोरदा की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी साहब के बोल। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस गीत की धुन पंचम दा ने ट्रेन के सफर के दौरान बनाई थी। पंचम दा एक ट्रेन यात्रा के दौरान पटरी से आ रही धक धक की लय को सुन रहे थे। उन्होंने उसी लय को

दिमाग में रखकर एक धुन गुनगुनाई और बॉम्बे लौटते ही आनंद बख्शी जी को सुनाई। बख्शी साहब ने सिर्फ 15 मिनट में ये अमर पंक्तियां लिख दी। जब किशोर कुमार ने इसे गाया तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं।

70s का दशक और गुलजार साहब का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं 1975 की फिल्म आंधी की, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इस गीत की मेकिंग का किस्सा बेहद हसीन है। गुलजार साहब और आरडी बर्मन कश्मीर की हसीन वादियों में शूटिंग की लोकेशन देख रहे थे। एक रात दोनों होटल के कमरे में बैठे थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। गुलजार साहब ने एक लाइन बोली, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, मगर जिंदगी भी तो नहीं। पंचम दा ने तुरंत अपना हारमोनियम उठाया और उसी वक्त रात के 2 बजे यह धुन तैयार कर दी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगलबंदी ने इस गीत को भारतीय संगीत का अनमोल रत्न बना दिया।